आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Beat of Bollywood.
1: तू मुझे चाहे न चाहे, ये तेरे बस में तो है, और मैं तुझको न चाहूं, ये मेरे बस में नहीं।

0: Big 106.2, The Beat of Bollywood.
1: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
0: Big 106.2, The Beat of Bollywood.

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: तू लव करती है ना मेरे से?
2: बस
1: लव है तो सब है।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
0: Big 106.2 The Beat of Bollywood.

0: याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती, किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं, कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह दो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती और रिश्तों की तरह दो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
0: Big 106.2 The Beat of Bollywood.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक 7:07। बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The beat of Bollywood.
1: ए सर्किट, अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापचिक एसी कहाँ मिलेगा बताना।
2: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
1: अलरास बोले तो
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
1: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
3: School's starting soon and we need a car.
4: And books, uniforms, everything.
3: Don't worry, I found the best back-to-school rent-a-car offer on selfdrive.ae. Self-drive cars renting from just 1,099 dirhams per month. Rent it for 1 to 12 months and enjoy one flat rate.
5: And what if we need it for a short while?
3: No problem. Zero penalty on early returns. Rent cars with great rates, best flexibility and no early penalties this back-to-school season. Selfdrive.ae. Get ready, get driving.
6: What if insurance gave you more than insurance? Buy anything from insurancemarket.ae and get MyAlfred Premium free for 1 year. Call 800-ALFRED. InsurancemarkeT.ae.
0: The Big Breakfast, brought to you by Dabur Pudin Hara. Stay indigestion free the natural way with Dabur Pudin Hara. Big 106.2.

0: गुंडा, कातिल, जेल से भागा हुआ मुजरिम, शराफत की किताब में मुझे खलनायक कहते हैं।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: अपने बिजनेस ड्रीम को दीजिए एक नई शुरुआत अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन के साथ। अब सिर्फ 2 घंटे में अपना लाइसेंस, 48 आवर्स में एक वीजा पाइए, ताकि जस्ट सिर्फ 4,888 दिरहम से शुरू। 100% डिजिटल प्रोसेस, मतलब ऑफिस विजिट की जरूरत नहीं। एक ही लाइसेंस में 10 बिजनेस एक्टिविटीज, साथ ही फ्लेक्सिबल इंस्टॉलमेंट प्लान्स। आज ही 0680888888 पर कॉल कीजिए या विजिट ancfz.ae।
3: स्कूल्स स्टार्टिंग सून एंड वी नीड अ कार
4: एंड बुक्स, यूनिफॉर्म्स, एवरीथिंग।
3: डोंट वरी, I found the best back-to-school rent-a-car offer on selfdrive.ae. Self-drive cars renting from just 1,099 dirhams per month. Rent it for 1 to 12 months and enjoy one flat rate.
5: And what if we need it for a short while?
3: No problem. Zero penalty on early returns. Rent cars with great rates, best flexibility and no early penalties this back-to-school season. Selfdrive.ae. Get ready, get driving.
6: Wow, your hair color looks stunning.
7: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
6: Yeah, right.
7: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
6: Really?
7: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
6: I'm buying it right now.
7: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural-looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color made in Italy.
3: Dabur Pudin Hara, just one tiny pearl packed with Ayurvedic mint oils, gives your stomach instant soothing relief.

0: बजे सिर्फ बिग 106.2 पर।
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: It was actually quite sunny for 7 a.m. today and temperature फिलहाल 33 degrees पर है, लेकिन it feels like 37, humidity level 50% पे चल रहे हैं।
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता।
1: ये है सिद ऑन द बिग ब्रेकफास्ट ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month, flat rate, with zero penalty on early returns. Big 106.2. The Big Breakfast on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अपनी आपके साथ। जब भी कुछ नया लॉन्च होता है, वो डिवाइस हमारी जो पुरानी पड़ी होती है, हमें देख के बोलती है, यार देख लो यार, मतलब इतनी बुरी मैं हूँ नहीं, लेकिन आप कंपैरिजन तो करोगे। एंड दैट इज व्हाई आई एम डूइंग इट फॉर यू। आईफोन 17 जो था, दैट गिव अस 120 हर्ट्ज प्रोमो डिस्प्ले, 48 एमबी कैमरास, द A19 चिप एंड अ प्रीटी सॉलिड बैटरी। बट आईफोन 18 प्रो एंड प्रो मैक्स जो है, दैट क्रैंक्स थिंग्स अप। व्हाट इज इट अबाउट? दे हैव 820 प्रो चिप, 48 एमबी मेन कैमरा, वेरिएबल अपर्चर है और फास्ट चार्जिंग है। एंड देयर इज दिस वन मोर थिंग, a vapor cooling system and a serious battery boost. Basically 18 pro max jo hai, that can actually go up to 45 hours of video playback. Hamare jo priorities hain pata lag chuki hain. And then enters the iPhone Duo, the first foldable iPhone. It opens up into a massive 7.6-inch display, जिसमें Apple Pencil भी support होती है and आप दो apps side by side भी चला सकते हो. It starts from 1999 dirhams. और मैं यही comparison अपनी roommates के साथ कर रही थी कि यार ये सब है and all we could do was दोनों का मतलब ऐसे ना बैंक अकाउंट पे ध्यान गया है। व्हाट इज इट अबाउट यू? व्हाट यू थिंक अबाउट द न्यू आईफोन 18 डुओ, द एप्पल लॉन्च, 18 प्रो रेंज? डू लेट मी नो 800-1062 पे कॉल करके। अंटिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.

0: Breakfast on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. गुड मॉर्निंग एंड होपफुली आप 2026 में ही हो, बिकॉज इंस्टाग्राम खोलते ही तो हम 80s में वापस पहुंच जाते हैं. आई एम नॉट इवन किडिंग, इंस्टा खोलते ही जितने मैंने श्रीदेवी, रेखा, स्मिता पाटिल, शबाना आजमी लगा लो आप, ऋषि कपूर, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, मिथुन, इतने देख लिए ना मैंने 80s के कि अब लग रहा है कि लेजेंड्स को लेजेंड्स रहने दो यार. आप चैट जीपीटी से एकदम सिमिलर, सेम सेम भाई, सेम सेम शक्ल है, ऑल ओवर सेम. मुझे ऑनेस्टली 2026 का फोमो होने लगा है. व्हाट इज इट अबाउट यू कि आपने अपने 80s वाले ट्रेंड की फोटो बनाई है शेयर करो 0543091062 पे, बिकॉज आई एम टेलिंग यू बिना देखे हुए कि वो सेम होने वाली है, लेजिट सेम होने वाली. अगर आपने अपनी बनाई है हमारी भी चेक कर लेना 106.2 बिग एफएम के इंस्टा हैंडल पर जाकर पोस्ट किया हुआ है, आप खुद चेक कर लो. सबने पिंक ब्लू है ना, ठीक है, एंड देन द पिंक इयर रिंग्स फॉर द गर्ल्स, ब्लो ड्राइड हेयर जिसमें एकदम खुले खुले बाल लग रहे हैं, एंड देन ओवर साइज शर्ट्स फॉर मैन, वो सेम बना रहे हैं यार. कुछ अलग आपने बनाया, डू शेयर इट विद मी 0543091062. इट इज अंटिल देन, कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक 8:06। Bollywood.

0: 101.2. The beat of Bollywood.
1: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
2: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
1: अलराज कहाँ है? कहाँ है अलराज?
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
1: चलो चले अलराज।
3: School's starting soon and we need a car.
4: And books, uniforms, everything.
3: Don't worry. I found the best back-to-school rent-a-car offer on selfdrive.ae. Self-drive cars renting from just 1,099 dirhams per month. Rent it for 1 to 12 months and enjoy one flat rate.
5: And what if we need it for a short while?
3: No problem. Zero penalty on early returns. Rent cars with great rates, best flexibility and no early penalties this back-to-school season. Selfdrive.ae. Get ready, get driving.
6: Where do you go for car, health, home, life, travels or business insurance? Try the one with over 30,000 Google reviews. 800 Alfred. Insurancemarket.ae.
0: The Big Breakfast brought to you by Dabur Pudin Hara. Stay indigestion free the natural way with Dabur Pudin Hara. Big 106.2.
7: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
8: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: Big weather update brought to you by Alras, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East.
9: It's 34 degrees out there as of now with 46% humidity. लेकिन weather comparatively काफी change हुआ है. लेकिन for a major change वहां तक जाने के लिए अभी एक बार temperature 47 तक जरूर जाएगा. आज नहीं लेकिन तब तक जरूर जाएगा. Keep it locked to Big 106.2.
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by insurancemarket.ae.

0: Already bought insurance somewhere else? Maybe don't check insurancemarket.ae now. You might wish you had checked before. Next time, compare first. 800 Alfred.
1: The Big Breakfast on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Big 106.2 से मैं हूँ अवनी आपके साथ. गुड मॉर्निंग. एंड यू स्कूल्स के जो रूल्स हैं काफी स्ट्रिक्ट हो चुके हैं फॉर स्टूडेंट्स दिस एकेडमिक ईयर एंड बहुत ही स्पेसिफिक हैं. तो याद रखना बहुत इजी है. एक बार रिपीट कर देते हैं. द नंबर ऑफ पब्लिक इट्स एक्चुअली बेस्ड ऑन अ पेरेंट्स बिहेवियर एंड फूड. सबसे पहले स्टूडेंट्स आर बीइंग टोल्ड कि वो काजा हेयरकट्स नहीं करके आ सकते. दे शुड अवॉइड दैट. व्हाट इज काजा हेयरकट? जहाँ पर आपका वन सेक्शन ऑफ योर हेड इज शेव्ड एंड द अदर सेक्शन हैज लॉन्ग हेयर. वो लॉन्ग हेयर स्टाइल्स हो गए, हुडीज हो गई, वो स्कूल प्रेमिसेस में अलाउड नहीं है. एंड जस्ट नॉट दैट, कैफेटेरिया ब्रेकडाउन इज इक्वली सीरियस. टी, कॉफी, सॉफ्ट ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, चिप्स ऑफ ऑल काइंड्स, ये सब कुछ अलाउड नहीं है. आप बाहर से भी लेकर नहीं आ सकते हो, कंज्यूम भी नहीं कर सकते हो. ये एक वार्निंग नहीं है. अगर आप ऐसे प्रोहिबिटेड फूड या ड्रिंक्स लेकर आते हो दैट विल बी कॉन्फिस्केटेड एंड डॉक्यूमेंटेड. एंड जस्ट नॉट दैट, आई थिंक स्कूल का डेकोरम होता है यार, एक करना होता है, निभाना होता है. एंड आई रिमेंबर व्हेन आई वाज अ किड We had this rules of, you know, दो चोटियाँ करके आनी है. Of course, मुझे as a kid बहुत लगता था कि why मुझ पे नहीं सूट करती है. Doesn't matter. आप जहाँ जा रहे हो उसके डेकोरम के हिसाब से आपको रेडी होना चाहिए. एंड दिस मेजर इज ऑफ कोर्स फॉर द स्टूडेंट्स एंड फॉर द स्कूल डेकोरम. याद रखना कुछ भी सूट करे स्कूल में नहीं, स्कूल के बाहर आके आप अपना सूट करवा सकते हो.

0: The Big Breakfast on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. इट्स 10th ऑफ सितंबर. गुड मॉर्निंग. एंड नई मॉर्निंग के साथ एक आयुष्मान की नई फिल्म का भी अनाउंसमेंट हो चुकी है, विच इज गोइंग टू गेट रिलीज 9th अक्टूबर को, नेक्स्ट मंथ ऑफ कोर्स. फिल्म का नाम है उड़ता तीर. बड़ा ही अजीबोगरीब नाम है, इंटरेस्टिंग नाम है, लेकिन क्योंकि आयुष्मान की मूवी है, वी गॉट टू गेट रेडी फॉर दैट. यार कम ऑन, वो हमेशा इतनी अतरंगी फिल्में चूज करते हैं दैट वी एंड अप लाफिंग. This time, get ready for Ayushman Khanna, and just not that, get school ready with self-drive. Now you can rent a car starting from 1099 dirham per month. The flat rate for the year, zero penalty on early returns. So basically, aapki school tak ki ride ab aur smooth ho chuki hai. Coming up next is the big check-in to Germany. Do send us your participation. Kaise karni hai batati hu. Until then, keep it locked to Big 106.2.

0: Desi Hair Color, made in Italy. Big 106.2.
1: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाने चाहता हूँ।
2: सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब।
0: Forget coffee, chai. He has got your morning kick. UAE's number one way to rise and shine. The Big Breakfast with Sid on Big 106.2. Brought to you by Dabur Pudin Hara.
3: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी, आपके साथ। इट्स अ गुड मॉर्निंग, 10th ऑफ सितंबर एंड टाइम है आपका जर्मनी जाने का विद बिग चेक इन टू जर्मनी। करना कुछ नहीं है, इतना ही करना है, बस टाइप करो बिग चेक इन स्पेस योर नेम एंड सेंड इट टू दिस व्हाट्सएप नंबर 0543091062। इट्स एन ऑल एक्सपेंस पेड ट्रिप। क्यों मौका गवा रहे हो यार, पार्टिसिपेट करो। अपना नाम रजिस्टर करने के लिए 0543091062 इज द नंबर। आई विल कॉल यू, हम खेलेंगे बॉलीवुड बीच टू जर्मनी। लेट्स सी आप जीतते हो या नहीं।
0: Participate in the Big Check-in contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है. देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे.
1: बिग टाइम चेक 9:06. बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.

0: 106.2. The Beat of Bollywood.
1: अपने बिजनेस ड्रीम को दीजिए एक नई शुरुआत अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन के साथ. अब सिर्फ 2 घंटे में अपना लाइसेंस, 48 आवर्स में एक वीजा पाइए, ताकि जस्ट सिर्फ 4,888 दिरहम से शुरू. 100% डिजिटल प्रोसेस, मतलब ऑफिस विजिट की जरूरत नहीं. एक ही लाइसेंस में 10 बिजनेस एक्टिविटीज, साथ ही फ्लेक्सिबल इंस्टॉलमेंट प्लान्स. आज ही 0680888888 पर कॉल कीजिए या विजिट ancfz.ae.
2: Schools starting soon and we need a car.
3: And books, uniforms, everything.
2: Don't worry, I found the best back-to-school rent-a-car offer on selfdrive.ae. Self-drive cars renting from just 1,099 dirhams per month. Rent it for 1 to 12 months and enjoy one flat rate.
4: And what if we need it for a short while?
2: No problem. Zero penalty on early returns. Rent cars with great rates, best flexibility and no early penalties this back-to-school season. Selfdrive.ae. Get ready, get driving.
5: High-speed autobahns, majestic Bavarian castles, the ultimate European adventure is calling your name. The big check-in is back and it's bigger than ever. So pack your bags because Big 106.2 is taking you to Germany. This isn't just a holiday, it's a golden ticket to the heart of Europe. Ready to board? Just send us a WhatsApp. Big check-in, your name to 054-309-1062. The Big Check-In to Germany. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Only on Big 106.2.
6: Did you hear that? That's the sound of something big landing at Papa John's. New oven-toasted sandwiches are here, crafted on sourdough ciabatta bread with an exceptionally crunchy bite that's impossible to ignore. 6 bold varieties, from the fiery Nashville chicken to the bold buffalo chicken, plus pepperoni, spicy chicken ranch, margarita and garden special. Turn up the crunch. Try the new Papa John's sandwiches. Download the Papa John's app today. Better ingredients, better pizza. Papa John's.
7: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
8: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
9: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट.
10: काफी ह्यूमिड है आज बाहर, इट्स ऑन 41% बाय द फैक्ट्स, लेकिन तब भी काफी ह्यूमिड लगता है विद टेम्परेचर गोइंग ऑन 36 degrees.
9: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25+ आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन. विजिट alras.me. बिग 106.2. बिग 106.2. सॉन्ग ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय insurancemarket.ae.

0: 0800 Alfred. Buying insurance is easy. It's when something goes wrong that your choice really matters. That's when insurancemarket.ae delivers.
1: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2. The Big Breakfast on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. चल रहा है बिग चेक इन टू जर्मनी. आपको सिर्फ मैसेज करना है 0543091062 पर बिग चेक इन स्पेस योर नेम. मैं करूंगी आपको कॉल. खेलेंगे हम बॉलीवुड बीच टू जर्मनी. एक हल्का सा म्यूजिक सुनाऊंगी, आपको सॉन्ग गेस करना है. एंड ये सब तो चलो ठीक है, हमें फैक्ट चेक करना है कि आपको आता है नहीं आता. आज का कॉन्टेस्ट ये है. लेकिन जस्ट इमेजिन यार, जर्मनी में वेकेशन किसको नहीं चाहिए होती.
3: सब अच्छा है,
2: ट्रिप की बात हो, मूड अपने आप अच्छा हो जाता है. So if you think you really, really, really need a vacation, message karo 0543091062 par. Big check and space your name because we are taking you to Germany.
1: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.

0: ए सर्किट अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापचिक एसी कहाँ मिलेगा बताना।
1: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
0: अलरास बोले तो
1: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जादेरा, रसल खोर, अलकूज, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
0: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
2: School's starting soon and we need a car.
3: And books, uniforms, everything.
2: Don't worry. I found the best back-to-school rent-a-car offer on selfdrive.ae. Self-drive cars renting from just 1,099 dirhams per month. Rent it for 1 to 12 months and enjoy one flat rate.
4: And what if we need it for a short while?
2: No problem. Zero penalty on early returns. Rent cars with great rates, best flexibility and no early penalties this back-to-school season. Selfdrive.ae. Get ready, get driving.
5: The Big Breakfast brought to you by Dabur Pudin Hara. Stay indigestion free the natural way with Dabur Pudin Hara. Big 106.2. The Big Mix. Miss kiya gaya?
6: कर ही नहीं सकते, चाहो भी तो नहीं कर सकते।
7: हाय कोमल, जर्मनी की तैयारी क्या कर रही है कोमल आपने?
8: तैयारी, आई मीन इट डिपेंड्स ऑन यू नो, आई मीन वंस आई एम फाइनलाइज्ड तो जस्ट बैग लेके निकलना है, दैट्स इट।
7: तो बैग्स पैक्ड हैं आपके, ओटीडी रेडी है,
8: एवरीथिंग।
7: अभी तक तो आ जाना चाहिए था।
8: नशे से चढ़ गए, नशे से चढ़ गए। आई एम ऑलरेडी डांसिंग बाय द वे। हां,
7: मुझे लगता है दिस इज यू जब आप जर्मनी जाओगे। नहीं,
8: यस
7: यस, थैंक यू सो मच कोमल, आपका नाम आज के लिए रजिस्टर हो जाता है। एंड लेट्स सी आप नेक्स्ट ड्रॉ में जो निकलता है जर्मनी जाओगे या नहीं। कांग्रेचुलेशंस,
8: थैंक यू मम्मी, थैंक यू सो मच।
5: चीयर योर मिडडे मूड मंडे टू फ्राइडे 1 to 5 PM, द बिग मिक्स विद अवनी, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड। Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
7: Heavy traffic on E11 and E311 around Mohizna and Dubai Sharjah Corridor. E44 Al Khail Road पर भी आपको Dubai Hills मैदान and Russell Khor की तरफ काफी patchy traffic मिलेगा। उसके बाद Hessa Street पर watch point होगा आपका JVC and Dubai Hills। Congestion हो सकता है Warsan and Russell Khor के around भी। कहीं और फंसे हो do let me know, call करके 800-1062 पर।
5: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1,099 dirhams a month, flat rate, with zero penalty on early returns. Big 106.2.

0: शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ, बहुत गहरा जाना चाहता हूँ। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है, फिर अपन 1001% हिस्ट्री बनाएंगे।
1: 106.2 The Beat of Bollywood. High speed autobahns, majestic Bavarian castles, the ultimate European adventure is calling your name. The big check-in is back and it's bigger than ever. So pack your bags because Big 106.2 is taking you to Germany. Presenting sponsor Danube Properties. This isn't just a holiday, it's a golden ticket to the heart of Europe. Ready to board? Just send us a WhatsApp. Big check-in, your name, to 054-309-1062. The big check-in to Germany, only on Big 106.2.
2: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1,099 dirhams a month flat rate with zero penalty on early returns.
1: The Big Mix. Weekdays 1 to 5 p.m. Only on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
3: One Big Ticket brings you many chances to win.
4: A guaranteed 20 million dirham grand prize.
3: 5 consolation prizes from 100,000 dirhams all the way up to 1 million dirhams.
4: 3 chances to spin for up to 1 million dirhams with Big Spin.
3: And 4 weekly electronic draw winners of 25,000 dirhams each.
4: Buy now at bigticket.ae.
5: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNC's apply.
1: Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
6: E11 watch out for Central Dubai corridor towards Sharjah, heavy congestion milega aapko wahan par. E311 par around Mohizna bhi traffic milega. Hisa street par JVC area is quite congested. Umsugim street par दुबई हिल्स की तरफ आपको ट्रैफिक अच्छा खासा मिलेगा. E44 दुबई अलेन रोड रासल खोर एंड वर्सान वाली साइड पर एक इंसिडेंट रिपोर्टेड है, तो वहां पर भी ट्रैफिक मिल सकता है आपको. कहीं और फंसे हो लेट मी नो, कॉल करके 800-1062 पर.
1: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month flat rate with zero penalty on early returns. Big 106.2.

0: नादान तो होते हैं यार इंसान इश्क में, और आपको पता ही है इश्क में मैं किसके हूँ, मूवीज एंड खाना, और खाने की बात ब्रेकफास्ट में कर रहे हो।
1: The Big Breakfast on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
0: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ, गुड मॉर्निंग। एंड अभी तक मेरा ब्रेकफास्ट नहीं हुआ, इसीलिए मुझे बस पापा जॉन्स की याद आ रही है। दे हैव लॉन्च्ड देयर न्यू ओवन टोस्टेड सैंडविचेस इन यूएई, क्राफ्टेड ऑन सादो स्टाइल चपाता ब्रेड विद एन एक्सेप्शनली क्रंची बाइट, एंड आई जस्ट एब्सोल्युटली लव इट। दे हैव गॉट 6 बोल्ड वैरायटीज इन टोटल। आप भी उनकी ऐप पर जाके ये सैंडविचेस ऑर्डर कर सकते हो, एंड द बेस्ट पार्ट इज इट टेस्ट एग्जैक्टली इन बिटवीन सैंडविच एंड अ पिज्जा। बेटर इंग्रीडियंट्स, बेटर पिज्जा, पापा जॉन्स। एंड ब्रेकफास्ट में ऐसा पिज्जा सब फ्लेवर कुछ खा लिया तो सुखविंदर सिंह का ट्रैक कमिंग अप योर वे नेक्स्ट, कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: नाम है सेठ, सेठ ऑन द बिग ब्रेकफास्ट ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।
3: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
4: School's starting soon and we need a car.
5: And books, uniforms.
4: Get a car offer on selfdrive.ae. Self-drive cars renting from just 1099 dirhams per month. Rent it for 1 to 12 months and enjoy one flat rate.
6: And what if we need it for a short while?
4: No problem. Zero penalty on early returns. Rent cars with great rates, best flexibility and no early penalties this back to school season. Selfdrive.ae. Get ready, get driving.
1: Big 106.2. Big 106.2. The beat of Bollywood.
7: Henna Speedy Hair Color. Covering the changes in the world and covering changes in your hair right now.
1: This is Fan Network News from the BBC.
8: BBC News with Moira Alderson. President Trump is addressing the Republican Party's first ever midterm convention in Texas. He's facing falling polling numbers and pressure from within his party to end the war with Iran, which is increasingly unpopular with the American public. The latest flare-up in the fighting has sent oil prices surging. The EU's Copernicus Climate Service says August was one of the two hottest months ever recorded, July 2023 being the other. It says the average temperature recorded in both months was 1.65 degrees above pre-industrial times. It's emerged that Spanish intelligence warned the government and Morocco about the potential for a mass coordinated crossing of migrants into Spain's North African territory of Ceuta, a day before 70,000 people flooded across the border. US immigration authorities say more than 150,000 immigrants from El Salvador will, for now, keep their temporary protected status, which had been scheduled to expire on Wednesday. The AI firm Anthropic says it's identified a fourth cybersecurity incident involving its Claude model. It said the latest incident had taken place in January, but gave no further details. Volunteers at the British charity that saves lives at sea say they've been the target of abuse and online threats by anti-migrant protesters. The charity, the RNLI, says its only purpose is to save lives. And a television news presenter in Uganda has been chosen to take the throne of the traditional kingdom of Toro in the west of the country. Prince Edward Rukidi Kija Nangoma works at the state-run broadcaster UBC. That's the latest. BBC News.
1: Fan Network News from the BBC. Great coverage, vibrant colour, natural finish. All in just 5 minutes. Henna Speedy Easy Hair Colour. Made in Italy. Big 106.2.
9: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ।
10: सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब।
4: Forget coffee, chai. He has got your morning kick. UAE's number one way to rise and shine. The Big Breakfast with Sid on Big 106.2. Brought to you by Dabur Pudin Hara.
0: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. दिस इज द लास्ट आवर ऑफ द बिग ब्रेकफास्ट. ऑफ कोर्स सिड छुट्टी बने इसलिए मैं फिल कर रही हूँ. अभी के लिए मुझे एक और अपडेट बताना था. हानिया आमिर कंप्लीट 10 इयर्स इन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एंड आई एब्सोल्युटली अडोर हर. मतलब शी सच अ ग्रेट इन्फ्लुएंसर, सच अ ग्रेट क्रिएटर, बट आई हैव बीन वॉचिंग देयर पाकिस्तानी सीरियल्स एंड बैंग ऑन, देयर सो बिंज वर्थी. एंड उसके बाद आज उन्होंने अपनी एक एल्बम रिलीज करी है, सॉन्ग रिलीज करा है पहली बार एज अ सिंगर. वाओ, एक्टर टर्न्ड सिंगर. बात करेंगे उस पैंटल देन. कीप इट लॉक्ड टू बिग वन.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: 10:07।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 101.2. The Beat of Bollywood. The Big Mix. Weekdays 1 to 5 p.m. Only on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
1: Digestion Cool Tips with Dabur Pudin Hara.
2: एसी से रूम कूल होता है, डाबर पुदीन हरा से टमी फील्स कूल. वन टाइनी पर्ल विद आयुर्वेदिक मिंट ऑयल्स हेल्प सूद इनडाइजेशन डिस्कम्फर्ट नेचुरली.
1: डाबर पुदीन हरा, स्टे इनडाइजेशन फ्री द नेचुरल वे. अवेलेबल ऑन नून मिनट्स. कंसल्ट योर डॉक्टर और फार्मासिस्ट बिफोर कंसम्पशन.
3: लगता है बर्फ पड़ने वाली
4: है. कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
0: Big weather update brought to you by Alras, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East.
5: It's quite humid outside. Filhal 38% pe chal rahi humidity with 37 degrees temperature, which actually feels like 45.
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by insurancemarket.ae.

0: Big. Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: High speed autobahns, majestic Bavarian castles, the ultimate European adventure is calling your name. The Big Check-In is back, and it's bigger than ever. So pack your bags, because Big 106.2 is taking you to Germany. This isn't just a holiday, it's a golden ticket to the heart of Europe. Ready to board? Just send us a WhatsApp. Big Check-In, your name, to 054-309-1062. The Big Check-In to Germany. Presenting sponsor, Daniel Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Only on Big 106.2.
2: One Big Day brings you many chances to win
3: a guaranteed 20 million dirham grand prize,
2: 5 consolation prizes from 100,000 dirhams all the way up to 1 million dirhams,
3: 3 chances to spin for up to 1 million dirhams Big Pin,
2: and 4 weekly electronic throw wins of 5,000 dirhams each.
3: What up, bigticket.ie?
4: This is Team Plus Game. Play responsibly. TNT.
0: Listen to her every day.
5: Mugembo!
6: There's one thing that I absolutely love, and that is winters. Oof, maza aane wala hai. Hi, Gaurav.
7: Yeah, hi.
6: How are you?
7: Hi, Manti. All good.
6: Ye kahan basement mein baith ke baat kar rahe ho?
7: Nahin, bas ye building ke corridor mein aa gaya tha.
6: आप ऑफिस में हो बीबी, तो घर वालों से छुप छुपा के बात कर रहे हो?
7: जी, किसी को बताऊंगा नहीं, अकेले अकेले जाऊंगा।
6: बहुत बढ़िया, वैसे भी अकेले ही ले जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा मोहल्ला जाएगा साथ। बट फिलहाल आपकी डीपी बड़ी अच्छी है, देख के लगता है यू आर इनटू रियल एस्टेट।
7: यस राइट, दैट्स राइट।
6: तो आपको हमारी क्या जरूरत है यार, रियल एस्टेट वालों को तो इतना सॉलिड कमीशन मिलता है, वो तो हफ्ते में एक बार जर्मनी जा सकते हैं। मैंने सुना है गए हो पहले आप कभी जर्मनी?
7: नहीं, जर्मनी नहीं, बट फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड एंड वन मोर थिंग इटली।
6: ये देखो मैं कह रही हूँ, रियल एस्टेट में बहुत पैसा है, पैसा ही पैसा है फिलहाल। तो आपका गाना है कौन सा गाना है गौरव?
7: वो हसीना वो हिलम पड़ी, कर गई जैसी जादू घड़ी, नींद इन आंखों से छीन ली, हाँ दिल में बेचैनियां है भरी।
6: ना ना ना ना ना ना ना ना ना, हम तुम्हें ले जाएंगे होपफुली जर्मनी को। शॉर्टलिस्ट हो गया गौरव, कंग्रेचुलेशन।
0: कीप योर इवनिंग्स इलेक्ट्रिक, 5 PM टू 9 PM, द बिग थ्रिल विद मानसी, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड। Traffic brought to you by selfdrive.ae.
8: E11, E311 पर towards Sharjah तो traffic मिलेगा ही आपको। There's heavy traffic as well on Russell Court and Business Bay, E44 पर। Hesar Street पर आपको JVC के round भी traffic मिल जाएगा। With that, there's congestion reported around Warsan and Dubai Safari Park as well। कहीं और फंसे हो, let me know 800-1062 पर।
0: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month, flat rate, with zero penalty on early returns. Big 106.2.

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ये मामू सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Breakfast on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड बात कर रही थी मैं हानी आमिर की. गॉट 20.1 मिलियन फॉलोअर्स लेकिन शी इज एन एक्टर. बहुत सारे पाकिस्तानी सीरियल्स मैंने इनके देखे. इट्स एब्सोल्युटली बिंज वर्दी. शी हैज डन वन बॉलीवुड पंजाबी फिल्म एज वेल. उसके साथ साथ 10 साल पूरे हो चुके उनको एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में. दैट इज वाई शी हैज रिलीज पाब्लो सॉन्ग टूडे. द एक्टर टर्न सिंगर. माई गॉड, हैट्स ऑफ.

0: song actually got a vibe, yaar. Pablo naam hai song ka. There's one surprise, huh? Very surprising cameo here. Lag gaya, aa gaya. You guessed it right. That's Rakhi Sawant for you. Well, I absolutely love it, you know, जब आप अपना हर टैलेंट स्किल जो है यूज करते हो, लेकिन तब भी कुछ लोगों को बदहजमी हो जाती है कि यार आप एक्टर हो, आप गाने क्यों नहीं गा रहे हो. एंड फॉर दोज जिनको जेन्युइनली बदहजमी हो रही है, लाइक द रियल वन, यू कैन स्टे इन डाइजेशन फ्री विद डाबर पुदीन हरा, जस्ट वन टाइनी पर्ल पैक्ड विद आयुर्वेदिक मिंट ऑयल्स दैट गिव्स योर स्टमक इंस्टेंट सूदिंग रिलीफ. इट्स पॉकेट साइज्ड एंड क्विक नेचुरल रिलीफ दे देता है. एंड यू कैन नाउ स्टे इन डाइजेशन फ्री द नेचुरल वे विद डाबर पुदीन हरा. अपने डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट से जरूर कंसल्ट करना बिफोर कंजम्पशन. इट्स ऑल्सो अवेलेबल ऑन नून मिनट्स. एंड अंटिल देन, कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2.
1: Big 106.2, fast track song of the hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: Bollywood. You are just one call away from your dedicated claims manager. Get car insurance from insurancemarket.ae. Call 800 Alfred 24/7.
1: जब चाहिए इफेक्टिव रिलीफ फ्रॉम इंडिजेशन, तब डाबर पुदीन हरा दे आपको रिलीफ नेचुरली। इसके छोटे से पर्ल में है आयुर्वेदिक मिंट ऑयल्स, जो आपके स्टमक को देता है सूदिंग रिलीफ। डाबर पुदीन हरा से आप होंगे रिलैक्स्ड और फ्रेश। डाबर पुदीन हरा, योर पॉकेट साइज कंपेनियन। इट्स नेचुरल एंड आयुर्वेदिक, जो रखे आपको इंडिजेशन फ्री। कंसल्ट योर डॉक्टर और फार्मासिस्ट बिफोर कंजम्पशन।
2: Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
3: E11 पर आपको नॉर्मल कंडीशन मिलेगा, उसके साथ साथ अदल इतिहाद रोड पर भी हैवी ट्रैफिक मिल सकता है। सेंट्रल दुबई इज जनरली मैनेजेबल नाउ एज कंपैरेटिवली टू एन आवर बिफोर। कहीं और फंसे हो ट्रैफिक में, लेट मी नो 800-1062 पे कॉल करके।
2: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month, flat rate, with zero penalty on early returns. Big 106.2.

ज्यादा तो मैं भी शरीफ हुआ था, पर शराफत से अपनी कभी नहीं बना। जरा हम भी तो देखें कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया।

0: The Big Breakfast on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. फिलहाल हो रहा जाने का टाइम, पर आपको पता है ना मैं हमेशा रहती हूँ इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन. ऑल यू हैव टू डू इज फॉलो अस ऑन 106.2 बिग एफएम. 80s ट्रेंड चल रहा है, कर चुके हैं हम भी. जरा चेक करो कि आपकी और मेरी शक्लें मिलती हैं नहीं मिलती हैं. बट हैविंग सेड दैट 80s ट्रेंड ना, मुझे वो वाला ट्रेंड वापस चाहिए जब मैं 80s में वापस जाऊँ. एंड ये फोटो वाला नहीं, आई फॉलो दैट ट्रेंड जहाँ पे मैं 1000 bucks की बस जमीनें खरीद रही. What do you have to say about that? मिलती हूँ आपसे 1 to 5 the big mix के साथ. Until then, keep it locked with the top notch songs coming your way. My favorite. That's me to my food actually. Breakfast time हो चुका है, करके आती हूँ. Keep it locked to Big 106.2.

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: नाम है सिद, ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
1: Big 106.2. That's my song.

0: Big Unlimited. The biggest Bollywood hits non-stop. Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता रे?
2: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
1: अलराज कहाँ है? कहाँ है अलराज?
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
1: चलो चले अलराज।
0: To play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 0543091062. Big 106.2, the beat of Bollywood. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by InsuranceMarket.ae.

0: favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 054-309-1062. Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
3: दो या चार?
2: चार।
3: कब तक वापस लौटेगा?
2: यूं ही यहीं 4-5 दिन में?
3: चार या
2: पांच?
4: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड, प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7-9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। More requests, more dedications. This is Big Unlimited on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: to play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 0543091062. Big 106.2, the beat of Bollywood. The Big Mix, miss kiya gaya?
1: कर ही नहीं सकते, चाहो भी तो नहीं कर सकते हो।
2: हाय कोमल, जर्मनी की तैयारी क्या करी है कोमल आपने?
3: तैयारी, आई मीन इट डिपेंड्स ऑन यू नो, आई मीन वंस आई एम फाइनलाइज्ड तो जस्ट बैग लेके निकलना है, दैट्स इट।
2: तो बैग्स पैक्ड हैं आपके, ओटीडी रेडी है,
3: एवरीथिंग।
2: अभी तक तो आ जाना चाहिए था।
3: नशे से चढ़ गए, नशे से चढ़ गए। आई एम ऑलरेडी डांसिंग बाय द वे। हां,
2: मुझे लगता है दिस इज यू जब आप जर्मनी जाओगे। नहीं,
3: यस।
2: थैंक यू सो मच कोमल, आपका नाम आज के लिए रजिस्टर हो जाता है। एंड लेट्स सी आप नेक्स्ट ड्रॉ में जो निकलता है जर्मनी जाओगे या नहीं। कांग्रेचुलेशंस।
3: थैंक यू मम्मी, थैंक यू सो मच।
0: चीयर योर मिडडे मूड मंडे टू फ्राइडे 1 to 5 PM द बिग मिक्स विद अवनी, ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। बिग 106.2, दैट्स माय सॉन्ग।

Bollywood hits non-stop. Big 106.2. The Beat of Bollywood.

0: हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तू क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है। ये जो गहरे सन्नाटे हैं, वक्त ने सबको ही बांटे हैं, दिल आखिर तू क्यों रोता है।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Drive cars renting from just 1099 dirhams per month. Rent it for 1 to 12 months and enjoy one flat rate.
1: And what if we need it for a short while?
0: No problem. Zero penalty on early returns. Rent cars with great rates, best flexibility and no early penalties this back to school season. Selfdrive.ae. Get ready, get driving.
2: Digestion cool tips with Dabur Pudin Hara.
3: बाहर की गर्मी को एसी कूल करता है और हेवी नील्स के बाद पेट को कंफर्ट देता है डाबर पुदीन हरा योर अंदर का एसी विद आयुर्वेदिक मिंट ऑयल्स फॉर सूदिंग रिलीफ
2: डाबर पुदीन हरा स्टे इंडिजेशन फ्री द नेचुरल वे अवेलेबल ऑन नून मिनट्स कंसल्ट योर डॉक्टर और फार्मासिस्ट बिफोर कंसम्पशन

0: You insure your car. What about the person driving it? Protect what matters most with health insurance from insurancemarket.ae. Call 800-ALFRED.
1: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: बिग 106.2 से मैं हूँ अवनी, आपके साथ मैं बात कर रही थी चुंबक वेब सीरीज के बारे में, जिसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है। इट्स मेड फ्रॉम द फिल्म मेकर्स ऑफ सारा भाई वर्सेस सारा भाई। व्हाट अ नॉस्टैल्जिक टीवी सीरीज फॉर 90s किड्स। हाँ, 80s का ट्रेंड चल रहा है, लेकिन 90s का सारा भाई वर्सेस सारा भाई ना कोई भी नहीं भूलता है। एंड दैट सच काइंड ऑफ ब्रेन ड्रॉर इज कमिंग योर वे। तो बेसिकली हमारी सुन ली गई है ट्रेलर, देखते हैं हम साथ में द स्टार्स अनीना गुप्ता, देवेन भोजानी, मानसी पारेख, सुमित व्यास एंड ऑल ऑफ द ओटीटी स्टार्स टुगेदर। इट्स गोइंग टू बी ऑन नेटफ्लिक्स। बात करते हैं इस बारे में, टिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
1: Listen to her every day.
2: Mugambo! खुश हुआ।
3: Hi Girish.
4: Hello.
3: मैं बर्बाद कर दूंगी और मैं बर्बाद होना चाहता हूँ. Suddenly, Sanjana has become viral. I don't know किसने ढूंढ के निकाला है उन्हें Instagram से.
4: This is way back, but at least a very trending dialogue you mentioned there.
3: तो किया है किसी लड़की ने ऐसे डायलॉग आपके साथ भी शेयर कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी?
4: Lucky. Well, actually, I'm sitting one next to the one who says this pretty often.
3: Oh.
4: This Pragya on the line. You want to say hi, Pragya?
3: Hi.
5: I've recently seen this trending everywhere and I'm vibing with this dialogue.
3: I know, right? मैं तुम्हें बर्बाद कर दूँगी. जरा recreate करो ना दोनों. मेरे पास तो है ही नहीं कोई बर्बाद करने वाला. You guys still have each other.
4: I'm already getting artists for getting her live on the radio without giving a heads up. I just picked her up outside the house, so.
3: Oh, you guys are dating?
4: Well, yes, we are.
3: Oh, very nice.
6: Keep your evenings electric. 5 p.m. to 9 p.m. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood. Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
7: E11 पर आपको ट्रैफिक मिल जाएगा, पर्टिकुलरली अराउंड JVC, अलबर्शा साउथ एंड टुवर्ड्स मुवेला. एंड उसके साथ साथ अलखेल रोड पर भी आपको बिजनेस बे, रासलखोर एंड नादल शेबा के साइड पर कंजेशन मिलेगा. D63 एंड अलबर्शा वाले रूट्स पर आपको हल्का ट्रैफिक मिल सकता है. टेक योरसेल्फ एक्स्ट्रा टाइम विद दैट. कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2.
6: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month, flat rate, with zero penalty on early returns. Big 106.2.
8: Ek aisi ladki jise dekhte hi dil ki har arzu, sare khwab, sare rang zinda ho jaye.
6: The Big Mix with Avni, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1,099 dirhams a month, flat rate, with zero penalty on early returns. Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: बिग 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ और मैं बात कर रही थी चुंबक वेब शो की जो आज रिलीज हो चुका है नेटफ्लिक्स पर. इट्स मेड फ्रॉम द मेकर्स ऑफ दैट टीवी सीरीज दैट नॉस्टैल्जिक सीरीज सारा भाई वर्सेस सारा भाई. लेट्स वॉच द ट्रेलर टुगेदर.
2: तुम सब हमारे बच्चे और हम तुम्हारे मुंह बोले पेरेंट्स हैं, लेकिन कब हम तुम्हारे बच्चे बन गए और तुम हमारे पेरेंट्स बन गए पता ही नहीं चला.
1: दैट्स नीना गुप्ता.
3: चुंबक कॉलोनी चेंबूर. पांच पड़ोसी, 10 दोस्त, हजार हंगामे.
4: ये दिखता क्या है इसमें? तुम एक सक्सेसफुल मॉडल, 12th फेल सेलिब्रिटी और ये कार्डियक सर्जन.
5: कि कार्डियक सर्जन है तो क्या हुआ? कोई काम छोटा नहीं होता.
1: वेल दैट्स एक्चुअली द रेसिपी फ्रॉम सारा भाई वर्सेस सारा भाई. ये पूरा का पूरा मिश्रण मुझे वैसा ही लग रहा है. स्टारिंग नीना गुप्ता इन द मेन लीड्स विद दिवेन भुजानी, मानसी पारेख, सुमित व्यास, हेली शाह, अर्जुन बिजलानी. बहुत सारे टीवी एक्टर्स भी हैं इस सीरीज में, लेकिन ऑल दी ओटीटी स्टार्स जिन्होंने अपना नाम सिर्फ ओटीटी के थ्रू ही बनाया है वो सबके सब यहाँ पर हैं. इट्स गोइंग टू बी बिंज वर्थी. आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस. Coming up your way after this track, keep it locked to Big 106.2, the beat of Bollywood.
0: The Big Mix, brought to you by InsuranceMarket.ae. For the best insurance deals in the UAE, call 800-ALFRED-247.
6: School's starting soon and we need a car.
7: And books, uniforms, everything.
6: Don't worry. I found the best back-to-school rent-a-car offer on selfdrive.ae. Self-drive cars renting from just 1,099 dirhams per month. Rent it for 1 to 12 months and enjoy one flat rate.
8: And what if we need it for a short while?
6: No problem. Zero penalty on early returns. Rent cars with great rates, best flexibility and no early penalties this back-to-school season. Selfdrive.ae. Get ready, get driving.

0: यार तुमने कोई बताया नहीं कि दुनिया ऐसी भी है।
1: मुझे खुद का पता था यार, मगर हूँ तो हूँ।
2: You are listening to the Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: ऑफिस में डेस्क पर बैठ के कैसे मचाओगे यार धूम, इसीलिए आपके लिए मैं ये लेकर आई हूँ। एंड अगर ये भी मिस कर दिया तो फिर मुझे नहीं पता कैसे मचेगी धूम।
1: द बिग मिक्स विद अवनि ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: बिग 106.2 पे मैं हूँ अवनि आपके साथ, दिस इज द बिग मिक्स। एंड ऑफिस डेस्क में लंच करने के बाद ना जॉन से माइंडसेट में हम जाते हैं ना कि काम करना है, थोड़ा सा और रहता है, करना है, चलो मैं एक घंटे में कर लेता हूँ, चलो आधे घंटे में कर लेता हूँ, चलो घर जाके कर लूँगा, ज़रूरी है अभी करके कर देता हूँ फिर मैं विला बैठ जाऊँगा। लेकिन वन कॉन्स्टेंट थिंग दैट गोज ऑन इन आवर माइंड, वेकेशन कब लेनी है, छुट्टी कब डालें, लॉन्ग वीकेंड कब आ रहा है, ट्रिप कब प्लान कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में लिखता हूँ कि यार चलो यार दोस्तों, That vacation buzz is on. सही बात पर हो, करना क्या है आपको, मैसेज करना है बिग चेक एंड स्पेस योर नेम एंड सेंड इट टू 0543091062 बिकॉज वी आर टेकिंग यू टू एन ऑल एक्सपेंस पे ट्रिप टू जर्मनी।
1: Participate in the Big Check-in contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.

0: गुंडा, कातिल, जेल से भागा हुआ मुजरिम, शराफत की किताब में मुझे खलनायक कहते हैं।
1: बिग 106.2

0: क्या तुमने कभी बताया नहीं कि दुनिया ऐसी भी है?
1: मुझे खुद का पता था यार, मगर हूँ तो हूँ।
2: You are listening to the Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: 2:07
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: If insurance gave you more than insurance, buy anything from insurancemarket.ae and get My Alfred Premium free for 1 year. Call 800-ALFRED.
1: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड 2013 में फिल्म रिलीज हुई थी ये जवानी है दीवानी. दैट बनी का कैरेक्टर प्लेड बाय रणबीर कपूर आज तक मुझे अपने दिलों में लेके चलते हैं. लेकिन हम इतने काम में बिजी हैं, वेकेशन पर कब जाएं, ट्रिप पे कब जाएं, किसी के साथ जाना पड़ेगा, फ्रेंड्स के साथ प्लान करना पड़ेगा. इमेजिन दिस प्लान्ड ट्रिप, ऑल एक्सपेंस पेड ट्रिप, आपको सिर्फ पार्टिसिपेट करना है. इससे परफेक्ट कुछ हो सकता है? बहुत ही इजी काम करना है. टाइप बिग चेक इन स्पेस योर नेम एंड सेंड इट टू दिस व्हाट्सएप नंबर जो कि वो भी फ्री है 0543091062. मैं करूंगी आपको कॉल, हम खेलेंगे बॉलीवुड बीट्स टू जर्मनी. लेट्स सी आप ये सॉन्ग गेस कर सकते हो या नहीं कर सकते हो. म्यूजिक सुनाऊंगी एंड यू हैव टू गेस द सॉन्ग. लेट्स सी आज किसका नाम रजिस्टर होता है फॉर द बिग चेक इन टू जर्मनी.
1: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.

0: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month, flat rate. TNC apply. Big 106.2. Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: बिग 106.2 पे मैं हूँ अवनी, आपके साथ चल रहा है बिग चेक इन टू जर्मनी। एंड आज मैंने कॉल किया है शिवानी को। हाय शिवानी, कैसे हैं आप?
2: एकदम बढ़िया, आप कैसे हो?
1: बहुत बढ़िया। क्या कर रहे थे आप?
2: बस देखो, योगा की तैयारी चालू थी।
1: ओ माय गॉड, वाह, आप तो बहुत ही फिटनेस फ्रीक हो। क्या जर्मनी जाने के लिए ऐसी तैयारी कर रहे हो क्या?
2: तो अच्छा रहेगा ट्रैकिंग के लिए, वहाँ पे
1: ट्रैकिंग के लिए अच्छा रहेगा। एंड स्टेप्स इतने पूरे करने होते हैं यार किसी भी ट्रिप पे चले जाओ।
2: 5K तो मिनिमम है।
1: ओके, लेट्स स्टार्ट द कॉन्टेस्ट विद यू। वी गोना प्ले बॉलीवुड बीच टू जर्मनी। मैं आपको एक गाना सुनाऊंगी, पर सिर्फ म्यूजिक सुनाऊंगी, ठीक है? आपको वो सॉन्ग गेस करना है।
2: ओके,
1: सो आर यू अ बॉलीवुड बफ इन जनरल?
2: यस आई एम।
1: लेट्स गेस दैट इफ यू आर अ नॉट। दो सेकंड भी नहीं लिए शिवानी ने। वाओ, यू आर जेन्युइनली टॉप नॉच।
2: थैंक यू।
1: देख लो, अब जनरल नॉलेज भी होती है तब भी इंसान जर्मनी जा सकता है, क्या पता क्या ना पता। बट थैंक यू सो मच शिवानी, आपका नाम जो है आज के कॉन्टेस्ट में रजिस्टर हो जाता है। लेट्स सी आप जर्मनी जाते हो या नहीं।
2: थैंक यू अवनी, थैंक्स।
1: एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द मैसेजेस। एग्जैक्टली क्या किया था आपने, बताना फिर से।
2: सिर्फ बिग चेक इन, मेरा नाम भेजा था व्हाट्सएप नंबर पे आपके।
1: और बहुत सारे मैसेजेस शिवानी ने भेजे। इनफैक्ट जब वो टाइप कर रही थी मैंने उनको तभी कॉल बैक कर दिया।
2: यस,
1: ओके, थैंक यू सो मच।
2: थैंक यू।
1: अगर आपका भी मन हो रहा है, मूड हो रहा है वेकेशन पर जाने का, एक ट्रिप प्लान करने का, दिस इज योर ट्रिप, एन ऑल एक्सपेंस पे ट्रिप। बिग चेक इन टू जर्मनी, टाइप बिग चेक इन स्पेस योर नेम एंड सेंड टू दिस व्हाट्सएप नंबर 0543091062। हम करेंगे आपको कॉल एंड लेट्स सी आप कॉन्टेस्ट जीतते हो या नहीं जीतते हो। अंटिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2।
0: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.

0: रहने की दुनिया ऐसी भी है,
1: मुझे खुद का पता था यार, मगर हूँ तो हूँ।
2: You are listening to the Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: मुझको। एंड दैट वाज सैयारा का ट्रैक सॉन्ग का नाम था बर्बाद। लेकिन दिस जनरेशन 2026 में है कि जो 80s में पहुंची हुई है, आई डोंट वांट फॉलो दिस ट्रेंड। मुझे एक और ट्रेंड फॉलो करना है वो 80s का ही, पर क्या अभी फॉलो कर सकती हूँ?
1: द बिग मिक्स विद अवनी ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: बिग 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ। दिस इज द बिग मिक्स। एंड 80s वाला जो ट्रेंड चल रहा है, आप अपनी फोटो चैट जीपीटी को देते हो, वो 80s जैसी एक्टर एक्ट्रेस की फोटो बना के, मोस्टली इन ब्लू और पिंक प्रिंट विद ब्लो ड्राइड हेयर, जो कि बहुत एरी हैं, खुले हुए हैं, वो वाली फोटो बना के देता है। दैट्स द 80s ट्रेंड। बट द 80s ट्रेंड आई वांट टू फॉलो इज कि मैं यार ऐसे 1000 bucks में एकदम लैंड लून खरीद लूँ, बस जमीनें खरीद लूँ यार। वैसा कोई ट्रेंड आता है तो लेट मी नो। कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

Big 106.2. The beat of Bollywood. Big 106.2. That's my song.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक 3:05।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: वसूली हो गई है भाई, पड़ गई है मुझे अदा शर्मा की ये फिटनेस रूटीन देखने के बाद।
1: The Big Mix with Avni on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
0: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ, this is The Big Mix and अदा शर्मा reveals her fitness routine. She says that she keeps it simple. Workout तब करती हैं जब मन करता है. A lot of movement, stretching, dancing and बस furniture की तरह उनको treat नहीं करना है खुद को, इसीलिए वो कभी ना कभी कुछ ना कुछ करती रहती हैं. Not one routine she follows. And then वो कोई follow नहीं करती हैं diet, she follows ingredients. Something that grows on tree, she trusted. That's what she says. And कोई बाहर से चीज़ आती है जिसमें 47 ingredients हैं already, जो मुझे पता ही नहीं है क्या है, तो वो नहीं खाती हैं. She eats pretty clean food most of the time, fruits, vegetables, protein, home cooked food. ना खाना भी खुद बनाती हैं. सुबह उठते ही 10 मिनट के लिए सबसे पहले वो बस एक ट्री के सामने बैठी रहती हैं 10 मिनट के लिए. I think so that's the sense of meditation. कोई गाना कुछ नहीं लगा होता. और अगर ये सुपर पावर ऐसी मेरे पास आ जाए, बीट नहीं करवाएगा भाई, समझ तो मैं जाऊं लेकिन फॉलो करना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है. बाय द वे मेरा ऑर्डर अभी आ रहा है, पार्सल खाने का खाने जा रही हूं मैं. कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2.

0: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month, flat rate. TNC apply. Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: The biggest news on trend is the iPhone. New Apple foldable iPhone. पहली बार आया है. Big 106.2 सुन रहे हैं आप. मैं हूँ Avni and iPhone 18 Pro Pro रेंज रिलीज हुई है, लॉन्च हुई है. लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या रहा है पुराने वाले फोन में इस वाले फोन में, समझ लो, सुन लो, रेट्स एक बार कंपेयर कर लो. iPhone 17 ऑलरेडी गेव अस 120 हर्ट्ज प्रोमोशंस डिस्प्ले, 48 MP कैमराज, द A19 चिप एंड अ प्रीटी सॉलिड बैटरी. बट iPhone 18 Pro एंड Pro Max में जो है, दे आर लाइक मोर थिंग्स. A20 Pro चिप है, 48 MP मेन कैमरा है विद अ वेरिएबल अपर्चर, बेसिकली वीडियोस शूट करने के लिए काफ़ी बेटर है दैन आईफोन 17. 18 प्रो मैक्स कैन गो अप टू 45 आवर्स ऑफ वीडियो प्लेबैक. एंड देन एंटर्स द आईफोन डुओ, एप्पल्स फर्स्ट फोल्डेबल फोन विद अ मैसिव 7.6 इंच डिस्प्ले जो एप्पल पेंसिल भी सपोर्ट करती है. एंड स्टार्टिंग प्राइस जस्ट, मतलब बहुत ही कम यार, $1,999. दैट्स इट.
2: जिन्नी सोनी लगदी है मनु किसे हो ना.
1: कभी कभी लगता है बस दूर से फोटो में ही अच्छा लग रहा है. What are your thoughts about the new 18 Pro range? Let me know. 800-106-2 pe call karke. Until then, keep it locked to Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: एक ऐसी लड़की जिसे देखते ही दिल की हर आरजू, सारे ख्वाब, सारे रंग जिंदा हो जाए।
1: द बिग मिक्स विद अवनी, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: absolutely love Rashmeet Kaur, the singer of the song Aaja Savariya. So full of talent, yaar. मतलब क्या वो talent है?
1: The Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.
0: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. एंड ये पुराने जो गाने होते हैं ना, रिवाइज्ड वर्जन्स कभी कभी बहुत ही अच्छे बन जाते हैं. दिस वन आल्सो वाज अ रिवाइज्ड वर्जन. नेक्स्ट वन कमिंग अप योर वे. आई एब्सोल्युटली लव इट. और मैं भूल चुकी थी यार ये गाना एग्जिस्ट करता था. एक्चुअली ये फीलिंग होती थी जब हम स्कूल से घर वापस जा रहे होते थे कि बस बहुत भूख लग गई है. फॉर मी इट वॉज लाइक दैट. तो घर जाते ही मम्मी के हाथ का मैं बेस्ट खाना खाने वाली हूँ. वेल, स्कूल की बात करते हैं. नाउ यू कैन गेट स्कूल रेडी विद सेल्फ ड्राइव. रेंट अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम 1099 धर्म पर मंथ, फ्लैट रेट फॉर द ईयर एंड जीरो पेनल्टी ऑन अर्ली रिटर्न. सो वापस तो आप आ जाओगे, लेकिन जाने वाली राइड आपकी स्कूल की स्मूथ होनी चाहिए. गेट स्कूल रेडी विद सेल्फ ड्राइव एंड कीप इट लॉक टू बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड.

0: सरदार खान नाम है हमारा, बता दीजिएगा सबको।
1: गोली नहीं मारेंगे साले को, कह के लेंगे उसकी।
2: Big 106.2 The Beat of Bollywood.
3: What?

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक 4:06।
2: Bollywood.

0: 106.2. The Beat of Bollywood. The Big Mix. Brought to you by InsuranceMarket.ae. For the best insurance deals in the UAE, call 800-ALFRED-247.
1: जब चाहिए इफेक्टिव रिलीफ फ्रॉम इंडिजेशन, तब डाबर पुदीन हरा दे आपको रिलीफ नेचुरली। इसके छोटे से पर्ल में है आयुर्वेदिक मिंट ऑयल्स, जो आपके स्टमक को देता है सूदिंग रिलीफ। डाबर पुदीन हरा से आप होंगे रिलैक्स्ड और फ्रेश। डाबर पुदीन हरा, योर पॉकेट साइज कंपेनियन। इट्स नेचुरल एंड आयुर्वेदिक, जो रखे आपको इंडिजेशन फ्री। कंसल्ट योर डॉक्टर और फार्मासिस्ट बिफोर कंजम्पशन।

0: 106.2 पर।
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: पीक हॉट समर से तो वेदर चेंज हो चुका है, लेकिन विद दिस वेदर चेंजिंग काफ़ी लोगों के गले खराब हो रहे हैं, फीवर हो रहा है। सो डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड ह्यूमिड लेवल्स काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। स्टे हाइड्रेटेड, स्टे सेफ।
0: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट अलरास.me। बिग 106.2।

0: पकौड़े बनाने तो नहीं आते मुझे, और मैं ना चाय भी बहुत गंदी बनाती हूँ। कौन सी बड़ी बात है, बाकी सब कुछ आता है मुझे। आपके ब्लैक हेड्स भी हटा सकती हूँ मैं। हो गया सॉल्व, आप कंटिन्यू करो।
1: द बिग मिक्स विद अवनि ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड चटपटे सॉन्ग्स में प्लस वन ऐड होते हुए दिस वन एज वेल पाब्लो नाम है सॉन्ग का एंड दिस इज हानिया आमिर सॉन्ग. शी हैज कंप्लीटेड 10 इयर्स इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री. आई लव वॉचिंग हर पाकिस्तानी सीरियल्स. इनफैक्ट मैं बिंज वॉच करती हूँ यार. लेकिन दिस टाइम क्योंकि हर लव फॉर म्यूजिक मेड हर डू दैट पाब्लो सॉन्ग इट इज. लेट्स हियर इट आउट. Vibe, yeah, wow. But there's one more surprise coming up. That's Rakhi Sawant in Haniya Aamir's Pablo song. Kaise nahi jayega yaar trend par. Coming up your way, another chatpata gana. Keep it locked to Big 106.2.

0: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month, flat rate. TNC apply. Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. इट्स अ फूड फेस्टिवल, तो कैसे बात नहीं करती यार इसकी. शारजा में लॉन्च होने वाला है फर्स्ट एवर जाशे अनसाना फेस्टिवल इन कल्बा. 24 सितंबर से 27 सितंबर तक ये चार दिन का फेस्टिवल होने वाला है. दैट विल सेलिब्रेट द यूएईज ईस्ट कोस्ट मैरिटाइम हेरिटेज, जहाँ पर ट्रेडिशनल फूड मिलेगा आपको, फिशिंग कॉम्पिटिशन होंगे, एजुकेशनल वर्कशॉप्स भी मिलेंगी. Just not that, marine sustainability sessions bhi lagenge. Jashe is sun-dried fish and sana is a condiment made from dried fish and spices. Agar aap bhi meri tarah foodie ho, lekin ye kha sakte ho. 24th to 27th September it is. Baki jashn to yaar hota hai food festival ke naam pe. Within raat aise festivals mein guzar sakte hain. I absolutely love the vibe. Keep it locked to Big 106.2.

0: Introducing Alfred Coins, the new way insurancemarket.ae rewards you. Buy insurance. Earn Alfred Coins. Enjoy rewards. Call 800-ALFRED.
1: एक ऐसी लड़की जिसे देखते ही दिल की हर आरजू, सारे ख्वाब, सारे रंग जिंदा हो जाए.
2: The Big Mix with Avni. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.

0: Late Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड द सॉन्ग ऑफ द आवर वाज ब्रॉट टू यू बाय insurancemarket.ae विद 30,000 गूगल रिव्यूज विद अ 4.8 स्टार रेटिंग बिल्ट इन UAE ट्रस्टेड अक्रॉस UAE एवरी रिव्यू इज अ स्टोरी ऑफ ट्रस्ट एवरी पॉलिसी इज अ प्रॉमिस केप्ट insurancemarket.ae फिलहाल हो रहा है मेरे जाने का टाइम पर आपको पता है यार मैं हमेशा रहती हूँ इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन ऑल यू हैव टू डू इज गिव अस अ फॉलो ऑन 106.2 बिग FM या फिर आप मुझे मेरे पेज पर भी फॉलो कर सकते हो अवनी यार AVNI YAAR एंड छोड़ के जा रही हूँ आपको टॉप नॉच ट्रैक्स के साथ जो साथ समंदर ढोल गया तेरे प्यार में ये बिन बोल और इसके बाद
2: लाल कलर की साड़ी में कुड़ी है तू डेंजर लगती है
1: लाल कलर से मुझे याद आया जो 80s का ट्रेंड चल रहा है हमारे कौन से कलर्स बने आप चेक कर सकते हो 106.2 बिग FM के इंस्टा हैंडल पर अंटिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106

0: When she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Come on, come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae and Dabur Shilajit.
1: Good evening, यह है Big Thrill, मैं हूँ Mansi और मैं क्या आपको गाना सुनाऊँ? मेरा तो गला ही बैठे हुए 3 हफ्ते हो गए, न जाने किसकी नजर लगी है। फिलहाल गाना सुनाने की बारी आपकी होती है। थर्सडे आ चुका है, वीकेंड वाले माहौल में है, फेस्टिव सीजन शुरू होने वाला है। सो वाइल यू आर आउट एंड अबाउट, आप ट्रैफिक जाम में अटकते हैं, हम यहाँ पे माहौल बनाते हैं, गाने गाते हैं विद द कारियोकी। अब गाना आए या ना आए, अगर आप गाना पसंद करते हैं देन दिस इज इट, गिविंग यू अ चांस टू होस्ट योर ओन कॉन्सर्ट व्हेन आई कम बैक। Kickstarting the show with

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड इवनिंग, द टाइम राइट नाउ 5:05।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, आपको धीरे धीरे पता चलेगा।
1: नाम है मानसी ऑन द बिग थ्रिल ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
3: School's starting soon and we need a car.
4: And books, uniforms, everything.
3: Don't worry. I found the best back-to-school rent-a-car offer on selfdrive.ae. Self-drive cars renting from just 1,099 dirhams per month. Rent it for 1 to 12 months and enjoy one flat rate.
5: And what if we need it for a short while?
3: No problem. Zero penalty on early returns. Rent cars with great rates, best flexibility and no early penalties this back-to-school season. Selfdrive.ae. Get ready. Get driving.
6: Digestion cool tips with Dabur Pudin Hara.
7: गर्मी हो या हैवी मील्स के बाद डिस्कम्फर्ट, डाबर पुदीन हरा है आपका अंदर का एसी। आयुर्वेदिक मिंट ऑयल्स फॉर अ रिलैक्स्ड कंफर्टेबल टमी।
6: डाबर पुदीन हरा, स्टे इंडिजेशन फ्री द नेचुरल वे। अवेलेबल ऑन नून मिनट्स। कंसल्ट योर डॉक्टर और फार्मासिस्ट बिफोर कंसम्पशन।
8: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
9: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
1: Big weather update brought to you by Alras, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East.
10: 38 degrees hai, low jayega around 33. Filhal humidity theek thaak hai 46% par.
1: Alras auto AC spare parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.
11: Big 106.2.

0: earns kilometers. Now your car insurance earns rewards. Buy from insurancemarket.ae and earn Alfred coins. Call 800 Alfred.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Good evening, I'm Mansi. This is The Big Thrill. And every single evening while you're stuck in the traffic jam, we jam here the only platform for bathroom singers to showcase their talent. Ab agar aap dil se gaate hain, then please don't care about what other people are thinking. Just enjoy your singing, and that is what we do here with The Karaoke. Gaadi mein baithe baithe aap apna concert host kar sakte hain.
1: Karaoke.
2: मैं हमेशा कहती हूँ कि हम देसीज वी बॉन्ड ऑन टू थिंग्स, खाना एंड गाना. एंड इफ यू एंजॉय सिंगिंग देन दिस इज इट. वैसे आज का ट्रैक इज वेरी वेरी स्पेशल. शाहरुख खान के बहुत सारे रोमांटिक गाने हैं, बट आई हैव टू से दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज एंड माय फेवरेट शाहरुख खान सॉन्ग.

1994 की मूवी कुमार सानू की आवाज, शाहरुख खान, दीपक तिजोरी, याद आ गया होगा गाना, आइकॉनिक गाना है। एंड अगर आप ये गाना गा सकते हैं, प्रोफेशनल सिंगिंग की नहीं दिल से सिंगिंग की जरूरत है, देन 800-1062 इज द नंबर फॉर द कैरियोकी।

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening, यह Big Thrill Mansi and every single evening 5 से 6 हम करते हैं karaoke और मेरी इस karaoke club के I think permanent member हैं वजाहत, ये हफ्ते में एक बार आके तो गाते हैं यहाँ पे. For all those who don't remember, इनका अपना TikTok channel है जहाँ ये गाते हैं, right?
2: Yeah, that's right. बिल्कुल सही कहा आपने. जैसे मौका लगता है आपसे बात हो जाती है और आप चांस भी दे देती हैं, तो
1: आप चाह रहे हो कि लोग जो है आपको सुन सुन के बुक करना शुरू कर दें. मैं कह रही हूँ सर, दुनिया सिर्फ लेन देन पे चलती है. फिलहाल कैसा था आपका थर्सडे?
2: थर्सडे बहुत अच्छा था, वेरी गुड. गोइंग टुवर्ड्स होम राइट नाउ और अच्छा रहा आज का सेशन. लेट्स सी टुमारो व्हाट विल हैपन.
1: द वीकेंड इज हियर, यू आई एम श्योर आर एक्साइटेड फॉर द वीकेंड. एनी प्लान्स?
2: फिलहाल तो कोई प्लान नहीं है, लेकिन लेट्स सी के
1: वीकेंड पे कुछ ना प्लान करना इज द बेस्ट प्लान एवर. आप बढ़िया अपने टिकटॉक वीडियोस बनाइए घर पे. फिलहाल आज शाम जो मैंने ट्रैक प्ले किया है, आई एम श्योर इट्स वन ऑफ योर फेवरेट्स एज वेल.
2: ऑफ कोर्स, कभी कभी हां कभी ना, समथिंग लाइक दैट, राइट?
1: बिल्कुल सही, कभी हां कभी ना से. फिलहाल आज सुनते हैं वजाहत की आवाज में.
0: Karaoke.

0: मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है, आप तो परमानेंट मेंबर हो यहाँ के। कमाल गाते हो आप, कमाल गाते हो। किसी ने अगर आपको यहाँ पे स्पॉट कर लिया ना तो मैनेजर मैं हूँ, आपकी बुकिंग्स मैं डील करूंगी, ठीक है?
1: थैंक यू सो मच फॉर बेस्ट विशेस मासी, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।
0: यू टू, थैंक यू फॉर सिंगिंग दिस लवली सॉन्ग फॉर अस वजाहत, हैव अ ग्रेट इवनिंग। एंड यही हम करते हैं, मैं कहती हूँ प्रोफेशनल सिंगिंग की जरूरत नहीं, अगर आप दिल से गाते हैं आई थिंक इट्स द बेस्ट वे टू अनवाइंड टू रिलैक्स व्हाइल यू हेडिंग बैक होम। सो इफ यू लव दिस सॉन्ग एंड इफ यूड लाइक टू सिंग, गिव मी अ कॉल ऑन 800-1062। वी आर कारियोकिंग।
2: कारियोकी 106.2 Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: Big 106.2, The Beat of Bollywood.
1: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
2: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं, जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
1: अलराज कहाँ है अलराज?
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
1: चलो चले अलराज।
3: स्कूल्स स्टार्टिंग सून एंड वी नीड अ कार
4: एंड बुक्स, यूनिफॉर्म्स, एवरीथिंग।
3: डोंट वरी, आई फाउंड द बेस्ट बैक टू स्कूल रेंट अ कार ऑफर ऑन selfdrive.ae। सेल्फ ड्राइव कार्स रेंटिंग फ्रॉम जस्ट 1099 dirhams per month. Rent it for 1 to 12 months and enjoy one flat rate.
5: And what if we need it for a short while?
3: No problem. Zero penalty on early returns. Rent cars with great rates, best flexibility and no early penalties this back to school season. Selfdrive.ae. Get ready, get driving.
6: Did you hear that? That's the sound of something big landing at Papa John's. New oven-toasted sandwiches are here, crafted on sourdough ciabatta bread with an exceptionally crunchy bite that's impossible to ignore. Six bold varieties, from the fiery Nashville chicken to the bold buffalo chicken, plus pepperoni, spicy chicken ranch, margarita and garden special. Turn up the crunch. Try the new Papa John's sandwiches. Download the Papa John's app today. Better ingredients, better pizza. Papa John's.
0: Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
7: एक घंटा छह मिनट का स्लो डाउन शेख जायद, इट इज पैक्ड, देयर इज हेवी ट्रैफिक एट द मोमेंट। अगर आप दुबई एयरपोर्ट के आसपास हैं, ट्रैफिक इज स्टैंड स्टिल। मर्फ टू मुहेस नाइफ यू टेकिंग द शेख मोहम्मद बिन जायद, 58 मिनट टू एन आर डिले देयर इज वेल। फेस्टिवल सिटी उम्र मूल अगेन पैक्ड है, रासल खोर इंडस्ट्रियल एरिया। प्लस इफ यू आर हेडिंग टूवर्ड्स जेवीसी, जेवीटी टेकिंग हेस स्ट्रीट, 47 मिनट डिले। हैवी ट्रैफिक डिस्कवरी से अगर आप फुरजान की तरफ जा रहे हैं, ऑल्सो स्लो मूविंग एट द मोमेंट नियर डीआईपी। इसके अलावा एनीथिंग अनयूजुअल आपने नोटिस करा है, यू वुड लाइक टू रिपोर्ट समथिंग, बताओ मुझे 800-1062 पर।
0: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month, flat rate. TNC apply. Big 106.2.
8: Prem bhai,
9: are gira kaun?

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: थर्सडे की शाम एक घंटे से ज्यादा का ट्रैफिक है शेखजाद पर. व्हाइल यू स्टक इन द जैम वी जैम हियर विद द कैरियोकी एंड राइट नाउ वी हैव गॉट अ फीमेल लीड सिंगर जॉइनिंग अस. हाय गुड इवनिंग.
2: हाय गुड इवनिंग मानसी.
1: हाउ आर यू दीपांजलि. एम आई टेकिंग योर नेम द राइट वे?
2: यस यू आर टेकिंग इट परफेक्टली.
1: दीपांजलि, वेरी नाइस. आई एम फ्रॉम कलकत्ता.
2: नो आई एम फ्रॉम चंडीगढ़ बट माय नेम इज बंगाली.
1: ओह नाइस. चंडीगढ़, वैसे मेरा भी यही हिसाब किताब है. आई एम फ्रॉम पंजाब बट माय नेम इज बंगाली. Because my mom used to watch a lot of Bengali movies and she also grew up in Calcutta. That is why.
2: Yeah, my mom loved that name, hence.
1: बड़ा अच्छा नाम है दीपांजलि. तो दीपांजलि, what are you up to? Are you stuck in traffic? Are you home?
2: So I'm stuck in traffic, of course, and then I'm listening to Big 106.2 and
1: best
2: you.
1: Company
2: so
1: ever.
2: It makes the life so much better. Yes.
1: How sweet, yeah, दीपांजलि. बहुत दिनों से किसी लड़की ने यहाँ अपनी मधुर आवाज में गाना गाया नहीं है. The song is, I think.
2: मधुर है पता नहीं, but I'll give my best.
1: मुझे तो बड़ी मधुर लग रही है. मेरी तारीफ कर दो तो मुझे सब अच्छा लगता है.
2: Good one.
1: Well, I'm sure you love the song. We know the song already.
2: I
1: so,
2: love it.
1: अब सुनेंगे दीपांजलि की आवाज में. हाँ जी.
2: ऐ काश के हम होश में अब आने ना पाए. ऐ काश के हम होश में अब आने ना पाए. बस नगमे तेरे प्यार के गाते ही जाए. ऐ काश के अब होश में हम आने ना पाए.
1: Not bad, not bad at all.
2: That is the first time.
1: Do you sing often? I mean, the moment I answered the call, you were singing the song जो बज रहा था. तो फिर आओ, तो मुझे पता है गाना गाने का शौक है. But parties में do you sing karaoke वगैरह का शौक है?
2: No, karaoke otherwise yeah, but not professionally, just generally with the friends who could you can you know bear my voice. But yeah.
1: And who don't misuse those videos later. Very important.
2: Yeah.
1: वरना ये बर्थडे पर डाल देते हैं.
2: अच्छा, okay.
1: मेरे साथ हुआ है ये बर्थडे पर डाल देते हैं, मतलब बिना सुरताल वाले वीडियोस. बट नॉट बैड है दीपांजलि. बट किसी ने गाया है ये गाना आपके लिए कभी, के खिलती महकती ये जुल्फों की शाम.
2: नहीं, हम अपने लिए खुद गा
1: रहे हैं. ओए, सेल्फ लव इज द बेस्ट लव. मतलब वी बोथ आर सेलिंग सेम बोट पे. जब बहुत दिल टूट जाता है ना, तो हम सेल्फ लव की गाड़ी पकड़ लेते हैं. दैट्स द बेस्ट.
2: प्रोबेबली राइट.
1: दैट्स द बेस्ट. यू हैव अ ग्रेट ड्राइव बैक होम एंड थैंक यू सो मच फॉर सिंगिंग दिस फॉर अस.
2: थैंक यू सो मच.
1: बाय दीपांजलि.
2: बाय बाय.
1: This is what we do. We sing, we enjoy, and we beat the traffic. अगर आपको भी गाना गाने का शौक है, I na I is not a problem. 800-106-2 is the number to dial.

0: when she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Come on, come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae and Dabur Shilajit.
1: I honestly don't know if it is a good news or not for the parents. Kids could get another 9-day extended vacation. Yes, sir. पेरेंट्स का रिएक्शन अबाउट दिस आई वुड लव टू नो. अभी तो स्कूल खुला था, फिर से छुट्टी. आई विश आई कुड मैनिफेस्ट दीज लीव्स फॉर अस अडल्ट्स ऑफिस में भी. सो या, ये न्यूज़ जो है ये अभी अभी आई है कि बच्चों को हो सकता है कि एक और एक्सटेंडेड 9 दिन का ब्रेक मिले हियर इन द यूएई. आई विल गिव यू ऑल द डिटेल्स. प्लस दिस आर वी आर ऑल्सो प्लेइंग दिस फन गेम, इट्स कॉल्ड द 5-second रूल. आपको मिलते हैं 5 सेकंड. मैं आपको देती हूँ कुछ कैटेगरीज. पता है मुझे साउंड्स वेरी वेरी ईजी, बट वेट अंटिल यू प्ले दिस गेम. इफ यू थिंक यू कैन क्रैक इट, गिव मी अ कॉल ऑन 800-1062.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड इवनिंग, द टाइम राइट नाउ 6:08।
2: Bollywood.

0: Smart people compare before they buy, especially insurance. Let insurancemarket.ae find you great cover at a great price. Why pay more? Call 800 Alfred.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Good evening, यह है Big Thrill Mansi. We're playing the 5-second rule and चहचहाती हुई काजल आ चुकी है. Hi काजल.
3: Hello.
2: How are you? कैसा रहा आज का दिन?
3: It was so good.
2: So good.
3: I was celebrating my birthday. That was on 5th.
2: So you're still celebrating 5 दिन तक. वैसे तो महीनों महीनों चलता है लड़कियों का birthday. I'm the same.
3: There was my exam was there, so I was not in the office from last 4 days from last my birthday. So I went today, so they celebrated.
2: Very nice. सबसे अच्छा gift किसने दिया?
3: Dyson I have received.
2: Dyson.
3: Yes.
2: यार मेरा सीवी ले लो यार, प्लीज मेरा सीवी ले लो प्लीज.
3: नो नो, आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम माय फियांसे, नॉट फ्रॉम माय ऑफिस.
2: वही मुझे लगा, मतलब यहाँ पे कौन सा ऐसा ऑफिस है जो एम्प्लॉइज का बर्थडे पे ये दे रहा है. हाँ फिर ठीक है, थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग.
3: या
2: वेरी नाइस.
3: डोंट वरी.
2: इज योर फियांसे सिटिंग नेक्स्ट टू यू?
3: नो नो नो नो.
2: देन मैंने आवाज सुनी किसी और की.
3: माय कलीग इज देयर.
2: अच्छा, उन्होंने क्या दिया?
3: Nothing.
2: ये देखो, सिर्फ बस केक खाने आ गए है ना.
3: केक खाने आ गए, but he wished me on by 12 PM and
2: all of this doesn't matter, Kajal.
3: Yeah.
2: Gift is very important on birthdays.
3: Gift is very important. Yeah, yeah. You should give me.
2: You should give her a gift. Chalo ji, filhal we'll play the 5-second rule with you. It's a fun game. You get 5 seconds. I'm going to give you a few categories. 3 cheeze batani hai 5 second ke andar. All the best, Kajal.
1: Okay. 5-second rule.
2: Oh yeah. अब आपका नाम काजल है तो 3 और नाम बताइए आँखों के synonyms.
3: आँखों
2: के synonyms.
3: नहीं टफ़
2: नहीं नयन बहुत सारे हैं. आगे बढ़ते हैं. 3 things that are red.
3: रेड
2: टाइम खत्म हो गया.
3: 3
2: कार्टून कैरेक्टर्स.
3: शिनचैन, मिकी माउस, डोरेमोन.
2: ये देखो लड़की बड़ी नहीं हुई है, मिल गया है डायसन, बट अभी तक शिनचैन में अटकी हुई है. आई लव शिनचैन.
3: मी टू.
2: फिलहाल 3 सलमान खान की मूवीज.
3: बजरंगी
2: भाईजान. दबंग. टाइम खत्म हो गया. टाइम खत्म. ये जो बैठे हैं आपके बजरंगी भाईजान साइड में, ये हेल्प कर रहे हैं पर अच्छे से नहीं कर रहे हैं आपकी. है ना. 3 थिंग्स दैट यू एब्सोल्युटली हेट एज गिफ्ट्स ऑन योर बर्थडे.
3: बुके.
2: ओके, टाइम खत्म हो गया. व्हाई यू डोंट लाइक फ्लावर्स?
3: Yeah, waste of money, no?
2: बहुत बढ़िया, ये लड़की जो है ये बहुत आगे बढ़ेगी. काम की चीजें दो. मुझे फ्लावर्स बहुत अच्छे लगते हैं.
3: फ्लावर्स देके निपटा दिया, that's not the good thing, no?
2: Very good. हमें दुनिया ने बहुत materialistic बना दिया, इसमें हमारी गलती है नहीं.
3: True.
2: 3 ऐसी चीजें जो आपके फियांसे में आपको बहुत ज्यादा पसंद है.
3: He's caring, he's lovable, he's so innocent.
2: सही जवाब लड़की ने दिया नहीं है कि बर्थडे पे डायसन देता है, बस यही बेस्ट क्वालिटी है. फिलहाल काजल बहुत खराब खेला, बट हैप्पी बर्थडे टू यू मेरी तरफ से भी.
3: हैव अ
2: ग्रेट ईयर एंड एंजॉय द रेस्ट ऑफ द ईयर. मे यू कीप गेटिंग सम फैंसी गिफ्ट्स. एंड ये जो बैठे हैं आपके कॉलीग, इनसे भी गिफ्ट वसूलना, ठीक है? पार्टी वार्टी तो नहीं दे दी है फ्री में?
3: नहीं नहीं, मैं आज फ्री हुई हूँ तो मैंने किसी को पार्टी नहीं दिया, ना मैंने खुद ने की है अभी.
2: जब तक गिफ्ट ना मिले तब तक पार्टी नहीं, ठीक है?
3: Done.
2: चलो जी, हैव अ ग्रेट इवनिंग, बाय. यही है 5-second rule. मैंने कहा ना, इट साउंड्स वेरी वेरी इजी, बट ये इजी है नहीं. अगर आपने खेलना है तो कॉल करो 800-1062 पर.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: हाँ जी, वी प्लेइंग द 5 second रूल. इट्स अ फन गेम. आपको मिलते हैं 5 second. मैं आपको देती हूँ कुछ कैटेगरीज, 3 चीजें बतानी होती है फटाफट खटाखट 5 second के अंदर. फिलहाल जैसे हिस्ट्री क्लास में जैसे ही टीचर अंदर आती थी हम गाते थे ना, गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग. वही हाल है आज अभिषेक का. क्या हुआ अभिषेक, क्यों हैं आप इतने थके हुए?
2: I'm stuck in this traffic, this E311.
1: ओए होए.
2: I don't like traffic.
1: Nobody likes traffic, but
2: yeah, it's very, very what to do.
1: But हमारे लिए बहुत अच्छा, हमारी रोजी रोटी है, तो ऊपर वाला और ट्रैफिक बढ़ाए. फिलहाल करते हैं क्या आप?
2: मैं कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करता हूँ.
1: What is the first thing you do when you get home?
2: Get home, I sleep.
1: जाते से? दरवाजा खुलते ही सो नहीं जाता है. सबके कुछ ना कुछ रिचुअल्स होते हैं. फिलहाल वी विल प्ले द 5 second रूल. इट्स अ फन गेम. यू गेट 5 seconds. आई एम गोना गिव यू फ्यू कैटेगरीज, 3 चीजें बतानी है 5 second के अंदर.
0: 5 second रूल.
3: ओह यस.
1: 3 things that you don't like about your job.
2: Early waking up, it is too hot sometimes and you need to carry a safety jacket.
1: Almost there. 3 Bollywood movies with the letter V.
2: वीर ज़ारा
1: और
2: विक्की कौशल.
1: विक्की कौशल, विक्की कौशल मूवी है. बहुत बढ़िया. विक्की डोनर. 3 ऐसे झूठ जो आप लोगों से बोलते हैं सो दैट आपके प्लान्स कैंसिल हो जाएं, यू डोंट गेट टू सी देम.
2: आई एम बिजी, माय वाइफ इज सिक, माय मदर इज सिक.
1: रेड फ्लैग हो अभिषेक, आप रेड फ्लैग हो टोटली.
2: इट्स ओके.
1: 3 चीजें जो आप अगर चाहें, वैसे तो इम्पॉसिबल है, अपनी बीवी के बारे में बदल सकते तो बदल देते.
2: She will cook more for me, come with me for workout and do adventure with me.
1: कौन सा adventure?
2: She don't do anything. We went to one trip last 3 days and she was just sitting at home.
1: जिस दिन वो adventurous हो गई ना, आप परेशान हो जाओगे. Moving on. 3 लड़कियों के नाम with the letter R.
2: R से Renu, Rita, Riya. Riya. My wife name is Renu.
1: हाँ, इनमें से फेवरेट रेनू ही है ना?
2: करेक्ट.
1: बहुत बढ़िया, संभाल लिया है. 3 things that we make out of cheese.
2: चीज सैंडविच, चीज बर्गर, चीज ऑमलेट.
1: वेरी नाइस, आप पकड़ी है रफ्तार. 3 साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट डिशेस.
2: डोसा, इडली, वड़ा.
1: खाने के शौकीन हो आप?
2: यस.
1: है ना? 3 चीजें जो अगर कोई करता है तो आपको बहुत गुस्सा आ जाता है.
2: तेज बात करना, जिम में डिस्टर्ब करना एंड धीरे गाड़ी चलाना.
1: फेस साफ करना.
2: धीरे गाड़ी क्यों चलाता रहा?
1: धीरे गाड़ी चलाना तो मतलब सामने वाला बंदा आपके चक्कर में फाइन ले ले, है ना? बहुत बढ़िया. खेला अच्छा है, मतलब देर से गाड़ी पकड़ी बट सही पकड़ ली. नॉट बैड एट ऑल फॉर द फर्स्ट टाइम. आई होप यू हैड फन अभिषेक.
2: यस, आई हैड फन.
1: चलो जी, घर जाओ, चाय वाय पियो. नहीं, आप तो जिम जाओगे कि सो जाओगे?
2: नहीं, जिम जा रहा हूँ.
1: जिम के लिए पूरी एनर्जी है, बीवी के लिए नहीं है. रेड फ्लैग. चलो, हैव अ ग्रेट इवनिंग. बाय
2: बाय.
1: ये 5 second रूल. आपने खेलना एक ही रूल है, कॉल करना है मुझे 800-1062 पर.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड इवनिंग द टाइम राइट नाउ 7:06।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
3: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.

0: सेंस अभी वो बहुत अच्छा है, आपको धीरे धीरे पता चलेगा।
1: नाम है मानसी ऑन द बिग थ्रिल ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: Renewing your car insurance? Whatever quote you've got, check insurancemarket.ae before you buy. Great cover, great value. One smart decision. 800 Alfred. Insurancemarket.ae.
3: School's starting soon and we need a car.
4: And books, uniforms, everything.
3: Don't worry. I found the best back-to-school rent-a-car offer on selfdrive.ae. Self-drive cars renting from just 1,099 dirhams per month. Rent it for 1 to 12 months and enjoy one flat rate.
5: And what if we need it for a short while?
3: No problem. Zero penalty on early returns. Rent cars with great rates, best flexibility and no early penalties this back-to-school season. Selfdrive.ae. Get ready. Get driving.
6: सर्किट अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची एसी कहाँ मिलेगा बताना।
7: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
6: अलरास बोले तो
7: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर। शारजा सज्जा देरा रसल खोर अलकूस गुसेस

0: एकदम राप्ची कैसी कहाँ मिलेगा बताना।
1: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
0: अलरास बोले तो
1: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर। शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूस, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं।
0: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर।
2: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
3: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
4: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
5: 37 डिग्रीज है, लो जाएगा अराउंड 33 फिलहाल, ह्यूमिडिटी 59% पर।
4: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट अलरास.me। बिग 106.2।

0: car, not your insurance bill. Find great car insurance at a great price with insurancemarket.ae. Compare. Choose. Drive. Call 800-ALFRED.
1: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.
2: Hanji, it's time to check in. We're flying here to Germany and very, very simple. To participate, to register, sirf ek WhatsApp message karna hai, Big Check In, your name, to 0543091062. Agar yahan message kar karke thak gaye ho, randomizer is not picking you, head to our Insta page. Wahan se direct entry mil sakti hai to travel with Team Big all the way to Germany, 106.2 Big FM. That's our Insta handle. Filhal randomizer ne dhoon nikala hai Shweta ko. Hi, Shweta.
3: Hi, Mansi. Good evening.
2: Good evening. Shweta, are you a Gen Z?
3: समझ लो।
2: हाँ, मैं समझ गई आपका वो WhatsApp status देके। श्वेता ने लिखा, I'm a good noodle. Please, kindly explain.
3: It's just a line from SpongeBob, honestly.
2: तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, मुझे लग रहा है मैं बहुत ही पुरानी हो गई हूँ, जबकि SpongeBob मैंने देखा है।
3: हाँ,
2: ये देखो, ये मुझे पुराना बोल रही है, मैं ले जाने वाली हूँ जर्मनी। हिंदी में देखते थे ना, तो उसने कुछ और बोला होगा तब। फिलहाल श्वेता, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू ट्रैवल्ड?
3: 2 weeks अगो।
2: ओह माय गॉड, वेयर डिड यू गो?
3: आई वेंट टू थाईलैंड विद माय फ्रेंड्स।
2: सो यू आर लाइक अ फ्रीक्वेंट ट्रैवलर?
3: आई एंजॉय ट्रैवलिंग।
2: तो बहुत सारे लाउंज एक्सेस वैक्सेस होते होंगे, कई कार्ड्स रखे होंगे।
3: वो मैंने डैड से चोरी किया है।
2: बहुत बढ़िया। प्लस वन है? नहीं है।
3: है बट लॉन्ग डिस्टेंस है।
2: नहीं नहीं, मैं लाउंज एक्सेस की बात कर रही हूँ भाई, ये कौन सा है? वेरी वेरी नो फिल्टर नूडल, आई हैव टू से, गुड नूडल का नहीं पता। अब आज के यार लाउंज एक्सेस का पूछ रही थी, चलो इन्होंने सारी डिटेल्स दे दी है। फिलहाल अगर आप बॉलीवुड की नॉलेज रखती हैं ठीक ठाक, आई एम गोना प्ले यू गाने का हुक, यू हैव टू गेस द गाना। अगर आपने गाना गेस कर लिया, स्ट्रेट अप यू विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर दिस ट्रिप टू जर्मनी। आर यू रेडी श्वेता?
3: आई एम रेडी।
2: ऑल द वेरी बेस्ट।
1: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.
2: Anji.
3: दिल है बेचैन वे, रस्ते पे नैन वे, दिस इज ताल से ताल।

0: तेरशाम ये राजो शाने नहीं रे बाबा आपते बाबा बाबा बाबूराव गणपतराव आपते बोल
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.

0: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.
1: I'm sure आपने अभी भी सुना कि कैसे श्वेता हो गई shortlist for this fantastic trip to Germany. You could be next. All you need to do is register करना बहुत जरूरी है. To participate, to register, WhatsApp भेजना है. Big check in अपना नाम 0543091062 पर. You can also get a chance through our Instagram page, which is 106.2 Big FM. अगर यहाँ number नहीं लग रहा है. And every single evening, in fact, morning, afternoon, evening, तीनों शोज में आपको मौका मिलता है शॉर्टलिस्ट होने का. सो मेक श्योर यू कीप ट्राइंग फॉर दिस ट्रिप दैट वी आर टेकिंग टू जर्मनी. मतलब आई कांट वेट. विंटर्स, यूरोप, क्रिसमस मार्केट्स, उफ उफ उफ उफ. तो फटाफट से रजिस्टर करो. ह्यूज शाउट आउट टू आवर लवली स्पॉन्सर्स फॉर मेकिंग दिस चेक इन टू जर्मनी पॉसिबल. Our presenting sponsor, Danube Properties. Our title sponsor, Papa John's. Associate sponsor, Sharaf DG and Ford. And our lovely travel partners, AFC Holidays.
0: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2. Big.

0: Autobahns, majestic Bavarian castles, the ultimate European adventure is calling your name. The big check-in is back and it's bigger than ever. So pack your bags because Big 106.2 is taking you to Germany. This isn't just a holiday, it's a golden ticket to the heart of Europe. Ready to board? Just send us a WhatsApp. Big check-in, your name to 054-309-1062. The Big Check-In to Germany. Presenting sponsor, Daniel Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Only on Big 106.2.
1: School's starting soon and we need a car.
2: And books, uniforms, everything.
1: Don't worry. I found the best back-to-school rent-a-car offer on selfdrive.ae. Self-drive cars renting from just 1,099 dirhams per month. Rent it for 1 to 12 months and enjoy one flat rate.
3: And what if we need it for a short while?
1: No problem. Zero penalty on early returns. Rent cars with great rates, best flexibility and no early penalties this back-to-school season. Selfdrive.ae. Get ready, get driving.
4: Did you hear that? That's the sound of something big landing at Papa John's. New oven-toasted sandwiches are here, crafted on sourdough ciabatta bread with an exceptionally crunchy bite that's impossible to ignore. Six bold varieties, from the fiery Nashville chicken to the bold buffalo chicken, plus pepperoni, spicy chicken ranch, margarita and garden special. Turn up the crunch. Try the new Papa John's sandwiches. Download the Papa John's app today. Better ingredients, better pizza. Papa John's.
0: The Big Mix. Miss kiya gaya?
5: चाहो भी तो नहीं कर सकते।
6: हाय शिवानी, मैं आपको एक गाना सुनाऊंगी पर सिर्फ म्यूजिक सुनाऊंगी, ठीक है? आपको वो सॉन्ग गेस करना है।
5: ओके। ये घुंघरू टूट गए।
6: ओह माय गॉड, 2 seconds भाई, 2 seconds भी नहीं लिए शिवानी ने। वाओ। देख लो, अब जनरल नॉलेज भी होती है तब भी इंसान जर्मनी जा सकता है, क्या पता क्या ना पता। बट थैंक यू सो मच फॉर ऑल द मैसेजेस। एग्जैक्टली क्या किया था आपने, बताना फिर से।
5: सिर्फ बिग चेक इन, मेरा नाम भेजा था व्हाट्सएप नंबर पे आपके।
6: और बहुत सारे मैसेजेस शिवानी ने भेजे, इनफैक्ट जब वो टाइप कर रही थी मैंने उनको तभी कॉल बैक कर दिया।
5: Cheer
0: your midday mood, Monday to Friday, 1 to 5 PM. The Big Mix with Avni. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
6: पैची ट्रैफिक स्टिल, अगर आप प्रोडक्शन सिटी से जा रहे हैं टुवर्ड्स आगे कहीं भी JVC से, इनफैक्ट शुरू होता है नॉट रियली बैड, 8 से 10 मिनट का ही डिले है। देयर इज आल्सो पैची ट्रैफिक अराउंड 15 टू 20 मिनट डिले नियर मरीना। हैवी ट्रैफिक स्टिल शेख मोहम्मद बिन जायद पर 45 मिनट डिले, शेख जायद अगेन 42 मिनट डिले। इट इज स्टैंड स्टिल नियर DIFC बिजनेस बे, बहुत ही स्लो मूविंग ट्रैफिक है आज शाम। हैवी ट्रैफिक इफ यू आर हेडिंग फ्रॉम डेरा टू नहादा, स्पेशली नियर गुरेर, बहुत स्लो मूविंग है। इसके अलावा इट गेट्स बेटर एंड हल्का फुल्का ही सही, आपको सतवा के पास भी ट्रैफिक मिलेगा। एनीथिंग एल्स यू लाइक टू रिपोर्ट मुझे बताइए 800-1062 पर।
0: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month, flat rate. TNC apply. Big 106.2.
7: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
8: नहीं, ये तो मुफ्त है।
7: गुड, क्योंकि चिल्लर नहीं है मेरे पास। चलो फोन लगाओ।
0: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: वो कहते हैं कि बूंद बूंद से सागर बनता है. इस लड़की ने ये प्रूव कर दिया. Gen Z girl is going viral because she's bought a plot of land from the money that she used to put in her gullak in her piggy bank. तो इस लड़की ने कहा है कि जब भी कोई family members, कोई relatives उसे gold coins और पैसे देते थे या कभी कोई चिल्लर बच जाता था, वो उसे गुल्लक में डाल देती थी. First of all, ऐसी family भी होनी चाहिए, ऐसे रिश्तेदार होने चाहिए जो आपको सोने के सिक्के दे के जाए, क्योंकि 2026 आ गया है फिर भी हमारी फैमिलियाँ 51 रुपए के शगुन से ऊपर बढ़ ही नहीं पा रही है यार. सोनू निगम के बाद शाहरुख खान, जूही चावला, कमिंग अप इन जस्ट अ बिट.
0: बिग 106.2.

0: सरदार खान नाम है हमारा, बता दीजिएगा सबको।
1: गोली नहीं मारेंगे साले को, कह के लेंगे उसकी।
2: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: सही जवाब. ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू गॉट इट राइट. द मूवी दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट वाज दबंग. आज ही के दिन इन 2010 ये मूवी रिलीज हुई थी. सोनाक्षी सिन्हा का ग्रैंड डेब्यू.
1: द बिग थ्रिल विद नॉन्सी ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: आई एम श्योर यू डोंट नो दिस बट रणदीप हुड्डा वाज द फर्स्ट चॉइस फॉर चुलबुल पांडे. यस, द मूवी वाज ओरिजिनली कंसीव्ड बाय डायरेक्टर अभिनव कश्यप एज अ डार्क gritty realistic drama without any songs, and us point pe Randeep Hooda was being considered for the lead role, but jab Arbaaz Khan ne script padhi, he decided to produce it, scale up the budget and make this movie into this high octane commercial masala entertainer. Salman Khan wanted Chulbul Pandey ki look bahut hi authentic from UP, and he actually modeled that thin mustache सोनाक्षी सिन्हा के पापा से इंस्पायर होकर. शत्रुघ्न सिन्हा ऐसी मूछे रखा करते थे. कमाल म्यूजिक एंड वो सनग्लासेस वाली ट्रिक वायरल हो गई थी जब 2010 में किसी को वायरल होना भी नहीं पता था. मुन्नी बदनाम, तेरे मस्त मस्त दुनैन, चोरी किया रे जिया, फैंटास्टिक म्यूजिक. दबंग सिंगल हैंडेडली रिवाइव द सिंगल स्क्रीन थिएटर कल्चर अक्रॉस इंडिया. Crossed over 219 crores worldwide, making it the biggest hit of 2010. 16 साल हो चुके हैं सोनाक्षी के डेब्यू को, 16 साल हो चुके हैं पांडे जी को, एंड आई थिंक आउट ऑफ ऑल द वर्जन्स ऑफ द मूवी द फर्स्ट पार्ट हैज टू बी माय फेवरेट.
1: बिग 106.2.

0: जब चाहिए इफेक्टिव रिलीफ फ्रॉम इंडिजेशन, तब डाबर पुदीन हरा दे आपको रिलीफ नेचुरली। इसके छोटे से पर्ल में है आयुर्वेदिक मिंट ऑयल्स, जो आपके स्टमक को देता है सूदिंग रिलीफ। डाबर पुदीन हरा से आप होंगे रिलैक्स्ड और फ्रेश। डाबर पुदीन हरा, योर पॉकेट साइज कंपेनियन। इट्स नेचुरल एंड आयुर्वेदिक, जो रखे आपको इंडिजेशन फ्री। कंसल्ट योर डॉक्टर और फार्मासिस्ट बिफोर कंजम्पशन।
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2, brought to you by selfdrive.ae. Big 106.2.

दुनिया दो लोगों में डिवाइडेड है, एप्पल यूजर्स एंड्रॉइड यूजर्स. इनकी जो है बहुत सॉलिड डिबेट्स होती हैं. आई एम अ वेरी लॉयल एंड्रॉइड यूजर्स, बट आई ऑल्सो नो दैट पीपल हु आर लॉयल टू एप्पल, दे लव एप्पल. अब एप्पल का नया डियो फोल्ड जो फोन है वो लॉन्च हुआ है. एप्पल यूजर्स आर एक्साइटेड. स्टार्टिंग प्राइस जो है इस फोन का रिवील हो गया है अराउंड 8,500 dirhams. आई एम नॉट सेइंग, बट द वर्ल्ड नोज के एंड्रॉइड जो है ये 7 साल पहले ही फोल्डिंग फोन्स जो है वो ले आया था. एंड 7 साल पहले हम टेक्नोलॉजी एक्सपीरियंस कर चुके हैं जो एप्पल वाले अब करेंगे. बट आई एम जस्ट वंडरिंग, 8,500 dirham का फोन जिसके साथ चार्जर भी नहीं आता है, जिसके साथ कोई भी फ्रीबीज नहीं आते हैं, लोग फिर भी लाइनों में लगे खड़े हैं. इसे कहते हैं मार्केटिंग, इसे कहते हैं लॉयल्टी. मैं ये फोन कभी नहीं खरीदूंगी क्योंकि इसकी इंस्टॉलमेंट कुछ सालों बाद मेरे घर के रेंट से भी ज्यादा होगी.

0: big thrill with Mansi on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: You know, कुछ गलत फहमियाँ इतनी क्यूट होती हैं कि मैं उन्हें ठीक भी नहीं करना चाहती हूँ. सो यू रिमेम्बर अमाल मलिक वाज इन द स्टूडियोज, वी टुक अ लॉट ऑफ पिक्चर्स टुगेदर, पोस्टेड दोस पिक्चर्स अप ऑन आवर इंस्टाग्राम पेज, गो एंड शो सम लव 106.2 बिग एफएम. ही हैज गॉट दिस मैसिव फैन फॉलोइंग. आई स्टिल रिमेंबर द लास्ट टाइम ही हैड कम इन 2021, हिज फैंस स्टार्टेड मैसेजिंग मी एंड दे स्टार्टेड आस्किंग अबाउट हिम. लिटिल डिड दे नो कि वो आए, इंटरव्यू हुआ, वो चले गए. अब फैन एडिट्स बना रहे हैं अमाल और मेरे. एंड एक बड़ी क्यूट सी एडिट मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी शेयर करी है कि आई वॉन्ट समवन टू लुक एट मी लाइक द वे शी इज लुकिंग एट हिम, एंड दैट वीडियो इज अडोरेबल. तो मैं चाहती हूँ कि ऐसी गलत फहमियाँ लोगों को हो कि हाँ, इफ़ आई एम डेटिंग समवन, ही हैज़ टू बी समवन लाइक अमाल मलिक, अ सेलिब्रिटी. सो गो एंड चेक इट आउट. फिलहाल अगर आप अभी तक चेक इन नहीं कर पाए हैं तो फटाफट कर लीजिए, हम आपको जर्मनी ले जाने वाले हैं. बातों में ये बात मत भूल जाना, इट्स एन ऑल एक्सपेंसेस पेड ट्रिप. तो अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, बिग चेक इन अपना नाम 0543091062 पर व्हाट्सएप करना है, इंस्टाग्राम 106.2 बिग एफएम, वहां से भी आपको मौका मिलेगा. यू कैन से हेलो टू मी, आई एम मानसी टॉकिंग. और वो जो लोग रूमर्स जो है स्प्रेड कर रहे हैं जिसमें मैं थोड़ा सा घी और डाल रही हूँ, उसके लिए मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाओ, मानसी टॉकिंग इट इज. हैव अ ग्रेट इवनिंग, आई विल सी यू टुमारो.

Big 106.2, The Beat of Bollywood. Big 106.2, The Beat of Bollywood.

आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड. लव लोफाई एंड नाइट फील्स योर ट्रैक्स ओनली ऑन द बिग चिल ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.

0: वायरल, आई डोंट नो किसने ढूंढ के निकाला है उन्हें इंस्टाग्राम से.
1: दिस इज वेल बैक बट एटलीस्ट अ वेरी ट्रेंडिंग डायलॉग यू मेंशनड देयर.
0: तो किया है किसी लड़की ने ऐसे डायलॉग आपके साथ भी शेयर कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी?
1: वेल एक्चुअली आई एम सिटिंग वन नेक्स्ट टू द वन हु सेज दिस प्रीटी ऑफन. This Pragya on the line. You want to say hi, Pragya?
0: Hi.
2: I recently seen this trending everywhere, and I'm vibing with this dialogue.
0: I know, right? मैं तुम्हें बर्बाद कर दूँगी. जरा recreate करो ना दोनों. मेरे पास तो है ही नहीं कोई बर्बाद करने वाला. You guys still have each other.
1: I'm already getting
0: बर्बाद.
1: I'm already getting artists for getting her live on the radio without giving a heads up. I just picked her up outside the house, so.
0: Oh, you guys are dating?
1: Well, yes, we are.
0: Oh, very nice.
3: Keep your evenings electric. 5 p.m. to 9 p.m. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood. Love, lo-fi and night feels. Your soundtracks to unwind. Only on The Big Chill. On Big 106.2, The Beat of Bollywood.

0: आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
1: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
2: दो या चार?
1: चार।
2: कब तक वापस लौटेगा?
1: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
2: चार या
1: पांच? पांच।
3: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। ओटीटी पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7-9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Big Chill, where every song feels like a deep breath after a long day. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: जितना भी ट्राई करोगी लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही।
3: बिल्कुल नहीं छूटेगा, क्योंकि होमवर्क भी मेरा, रिसर्च भी मेरी, बट प्लान होगा आपका। फ्रॉम कैफेज टू स्ट्रीट फूड, बजट फाइंड्स टू वायरल स्पॉट्स, ट्यून इनटू द बिग रेकमेंड्स एवरी संडे। क्योंकि अगर अवनी ने बेस्ट कह दिया तो बस कह दिया।
0: Catch the big recommends every Sunday from 3 to 6 p.m. with Avni. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. Some nights need no words. Just the right vibe. Sink into the big chill. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood.

आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

क्या प्यार ये मेरा कमजोर था यारा, क्या प्यार ये मेरा कमजोर था यारा, जो कि ये दिल के हजारों टुकड़े और छोड़ा मुझे बेसहारा।

सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।